बगिया में भावरे आए और अकेले चमेली घबराए। मुबारक बेगम जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना फ्रॉम द मूवी जिंदगी और ख्वाब कंपोज बाय मैस्ट्रो दत्ताराम वाटकर। तो हमारे प्रिय प्रिय सुनने वालों, सभी नगमे फिल्म जिंदगी और ख्वाब जो रिलीज किया गया था 1966 में मैं आप सभी को सुना चुका हूँ। अब लेकर चलते हैं आप श्रोताओं को जो देखा जाए एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1963 में, अकेली मत जइयो। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है महान अभिनेत्री ब्यूटीफुल मीना कुमारी जी के साथ और मीनू मुमताज जी के साथ। म्यूजिक डायरेक्टर, संगीतकारों का संगीतकार महान म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट मदन मोहन जी, और अल्फाजे है बयानों का मैस्ट्रो मजरू सुल्तानपुरी जी के हाथ में। तो उसी फिल्म में से अब आप नगमे सुनेंगे। एक ब्यूटीफुल डुएट है जो मैं रख चुका हूँ प्लेयर में और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को। महान संगीतकार जोड़ी हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द ग्रेट सुरोका देवी, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और सुरोका बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज़ में ये अति सुंदर बयान आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन। ये तो कहो कौन हो तुम,

Kelly Majayo 1963 ye to kaho kaun ho tum Lata ji aur Rafi sahab ji ki awaaz mein ye sundar bayan aap sabko ne suna composed by maestro Madan Mohan aur alfaz the Sultan Puri ji ka Faun Hindustani radio pe aap tune hai गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है हम पहुंच चुके हैं फिल्म अकेली मत जइयो तक जो रिलीज किया गया था 1963 अगला बयान थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ Beautiful song, gesongen door Queen of Rock and Roll, Asha Bhosle ji, composed by Maestro Madan Puri, lyrics Majnu Sultan Puri.

ब्यूटीफुल सॉन्ग थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ एक फिल्म अकेली मत जाइयो 1963 कंपोज बाय मास्टरों मदन मोहन क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में यारो कुछ शेष हो जाए हमारे शेष के चाहने वालों के लिए ना अर्ज क्या है यारो कि हम भी कभी मुस्कुराया करते थे हम भी कभी मुस्कुराया करते थे उजाले में भी शोर मचाया करते थे उसी दिए ने जला दिया मेरे हाथों को उसी दिए ने जला दिया मेरे हाथों को जिस दिए को हम हवा से बचाया करते थे ये भी होता है जिंदगी में यारो दारू और सिगरेट पीने वाले इंसान कभी मतलबी नहीं होता दारू और सिगरेट पीने वाला इंसान कभी मतलबी नहीं होता जिसे अपनी खुद की जान की चिंता नहीं वो भला मतलबी कैसे या कितनी कठोर विधाम बना है खुदरत की कितनी कठोर विधाम बना है खुदरत की फूलों का राजा गुलाब कांटों में रहता है और जीवन का निर्माता जातों और पाटों में रहता है दिल की ख्वाहिश को नाम क्या दूं प्यार का उसे पैगाम क्या दूं इस दिल में दर्द नहीं यादें है उसकी अब यादें ही मुझे दर्द दे तो उसे इल्जाम क्या दूं धोखा फरेब सब जमाने में रह गए हम प्यार का हक अदा करने में रह गए जो साथ चले थे वो आगे निकल गए हम रास्ते के पत्थर हटाने में रह गए ये भी होता है यारो जिंदगी में एक मजेदार शेर है ये बच्चों को कुछ यहाँ पर फरखड़े किया जाता है ना आजमा जाता है कहा जाता है कि इंग्लिश में सू के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे दीर्घन में जो जाते हैं तो कहते हैं एक बंदर को देखकर ओह वाओ लुक अ मंकी इज स्लीपिंग Let's not disturb him. और वही बच्चे एक हिंदी मीडियम स्कूल के जो दीर्घन में जाते हैं तो बंदर को देख के बोलते हैं देख तेरा बाप सो रहा है पत्थर मार साले को ये भी मजेदार दिल के दर्द को दिल तोड़ने वाला क्या जाने दिल के दर्द को दिल तोड़ने वाला क्या जाने प्यार की रस्मों के ये जमाने वाला क्या जाने होती है कितनी तकलीफ कबर के नीचे ये ऊपर से फूल चढ़ाने वाले क्या जाने तो ये था कुछ शेर्स है हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए आगे मैं कोशिश करूंगा और कुछ सुनाने को प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं एक बड़ी पुराना सॉन्ग है एक फिल्म अकेली मत जाइयो मदन मोहन जी के साथ पर एक बार फिर क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल सॉन्ग पिक्चराइज गया है मीना कुमारी जी के ऊपर

Kelly Mateo, beautiful song, title song from the movie Kelly Mateo, 1963. Maestro Manan Mohan ji ke saaj par sunaya aap sabhi ko Bharat Ratna Queen of Melody Lata Mangeshkar ji. और अति सुंदर बयान मैं रख चुका हूं प्लेयर में आप श्रोताओं के सेवा में. और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी और पद्मश्री शुरू का बादशाह रफी साहब जी. रास्ते में दो अनजाने ऐसे मिले आई द फिल्म अकेली मत जाइयो 1963. Beautiful song, special, aapke naam.

masterpiece of composing by maestro Madan Mohan Ji. Majnu Sultan ke likha hua ati sundar bayan sunaya aap sabhi ko Suru ka Badshah, the king of melody, Rafi Sahab Ji aur Asha Bhosle Ji ay jo film Akeli Mat Jaiyo 1963. देखा जाए तो एक अति सुंदर गजल आप सुनेंगे, ब्यूटीफुल ओथ गजल सॉन्ग कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन एड फिल्म अकेली मत जाइयो। जरा लफ्जों पे ध्यान दीजिए, सा यानी मजरू सुल्तानपुरी जी ने क्या अल्फाजे इस्तेमाल किया है इस गाने में, गजल में, तो जरा मिल के सुनते हैं ना। वो जो मिलते थे कभी, क्या अल्फाजे है, दिल को छू लेने वाला नगमा।

तुम्हारे प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना।

0: Uit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ फ्रॉम द मूवी ललकार 1973 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप श्रोताओं को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी क्या गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो कि हैप्पी नास्तावते लीफ कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम आउट इज गोट गीत और गजल और एक महान संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर के कुछ नगमे लेकर आया हूँ पुराने जमाने के डगड़ेत जयदेव जी के बनाए हुए कुछ धुने आप सुनेंगे और उसके बाद सिर्फ नगमे चलेंगे जिन मूवीज में ये महान अभिनेता डगड़ेत एक्टर श्री राजेंद्र कुमार जी ने जिसे हम लोग जुबली कुमार के नाम से भी जानते थे जिनमें ये महान अभिनेता ने काम किया है तो बीच में कुछ ज्ञान के बातें भी है हमेशा की तरह कुछ शायरी भी है तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना जहां पर भी हो जी साल में हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो आप सभी को याद करते हैं और स्वीकार कीजिए हम लोगों का मोहब्बत से भरा हुआ सलाम और प्यार दुलार के साथ रवि साहब जी

हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वादा के मुताबिक लेकर चलते हैं ये महान संगीतकार जयदेव जी के कुछ बनाए हुए धुने के तरफ। और जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए यारों की ये जबरदस्त संगीतकार जयदेव जी जितना धुने बनाए हैं तकरीबन 95% से ज़्यादा इनके गाने सुपरहिट साबित हुए। तकरीबन 30 फिल्मों में अपना संगीत दिया है, हिंदी फिल्मों में और कुछ अलग भाषा की फिल्मों में भी अपना संगीत दिया है। तो मिलकर सुनते हैं एक जबरदस्त सॉन्ग जो ये महान संगीतकार ने बनाया था लता जी के लिए, जो लोगों को बेहद पसंद आया था। फ्रॉम द मूवी प्रेम पर्वत, क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में, और ज्ञान निसार अख्तार यानी जान निसार अख्तार का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान, वन ऑफ माय फेवरेट लता जी का ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम एंजॉय।

masterpiece of composing by the great music director maestro Jay Dale from the movie Prem Parbat 1973. Agla bayan ki taraf badhte hain ek ati sundar bayan hai evergreen song sunane ko ja rahe hain aap sabhi ko ek bar phir Lata Mangeshkar ji ke मधुर आवाज में एड फिल्म हम दोनों और इस बार साहिल ध्यानवी जी का लिखा हुआ ये दिल को छू लेने वाला नगमा कि अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम आल्सो कंपोज्ड बाय मास्टर जयदेव

Melody Lata Mangeshkar ji ke madhur awaaz mein aaj movie Hum Dono, Shahir Ludhianvi aur Jaydev ka ye combination to aap sun rahe hai. Agla bayan ki taraf badhte hai, ek aur zabardast song hai jo kafi lokpriy bane the us zamane mein. 1961 ka ye banaya hua dhun ऐ फिल्म हम दोनों, और गुजारिश है मुझसे आप सभी से कि लफ्ज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि महान लेखक शाहिर जी ने ये नगमा को इतने खूबी से लिखा है. क्या बात है, ज़िंदगी बदल देता है लोगों का अगर ये नगमा आप ध्यान से सुने. मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, वन ऑफ माई फेवरेट रफ़ी साहब जी का, मिल के सुनते हैं.

का साथ निभाता चला गया। एक फिल्म हम दोनों ने रिंग एन सिस्टर रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में और जयदेव जी का साज क्या कॉम्बिनेशन था। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है गीत और गजल और इस गोल्ड संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। पुराने जमाने uit de eind 40, 50, 60 tot 70 kan je mahan sangeetkar Sri Jaydev ji ke kuch banaye hue dhune aap sun rahe hai. Agla bayan also from the movie Hum Dono 1961 ek zabardast song hai mahan gayak Suro Ka Badsha the king of melody Padma Shri Mahmud Rafi sahab ji ke मधुर आवाज में कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। A masterpiece of composing by maestro जयदेव जी।

from the movie Ham Dono, la tajike beautiful awaz mein thi sundar bayan aap shrotaon ne suna, khas karke fahun hindustani radio ke madhyam se. जहां में ऐसा कौन है, इस बार क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में, ऑल्सो फ्रॉम द मूवी हम दोनों, साहिर लुधियानवी और मैस्ट्रो जयदेव जी के कॉम्बिनेशन अल्फाजे और साज मिलके सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल.

जहां में ऐसा कौन है, एक फिल्म हम दोनों क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय मास्टर साहिर लुधियानवी, यानी अल्फाज़े थे साहिर जी का और संगीत साज था मास्टर जयदेव जी का। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है और इस बार लाते हैं डॉक्टर के जी येसुदास जी को प्रोग्राम में। एड यार 1977 फ्रॉम द मूवी आलाप कंपोज एंड अरेंज्ड बाय मास्टर जयदेव जी।

0: जानना चाहता हूँ कि जान को ये अधिकार किसने दिया कि वो अपनी प्रेमिका को अकेला छोड़कर चला जाए।
1: अरे ये क्या मजाक है, सुनो ना।
0: ये मजाक नहीं योर ऑनर, ये एक दुखी आत्मा की पुकार है। कानून अगर आपकी तरह औरत होता तो मेरी मौकिला श्रीमती प्रेमिका के दिल का दर्द समझ लेता। कोई लड़की जिंदगी भर एक सखी के साथ बात करके नहीं रह सकती। मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि अदालत प्रेमिका की पूरी दुहाई सुनने के बाद

0: जाति देखी और औरत, एक तो वो बिचारी प्रेमिका को अकेला छोड़कर अपना आता पता बताए बिना चला जा रहा है, और ये भी बताने को तैयार नहीं है कि वो कब वापस आएगा। लो जेंटलमैन ऑफ द जूरी भी आ गए। जेंटलमैन ऑफ द जूरी, आप भी सोचिए और ये भूल कर सोचिए कि आप मर्द।
1: सोचिए सोचिए भाई, सोचने समझने का काम अपनी भाभी भी छोड़िए।
0: आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जूरी जो कि वकील, इतना भी नहीं जानती कि अदालत न किसी की बीवी होती है न भाभी, लेकिन
1: अदालत क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए वो जूरी बिना भी देविका के दिल का हाल समझ सकती है।

देखकर कि दिल अभी भरा नहीं। फ्रॉम द मूवी हम दोनों 1960, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी और सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। महान संगीतकार जयदेव के कंपोज किया हुआ ये अति सुंदर धुन अल्फाजे थे महान लेखक शाहिर लुधियानवी जी का। तो हमारे प्रिय श्रोताओं यही तक था आज का ये स्पेशल महान संगीतकार द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर माएस्ट्रो जयदेव जी का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन और देश विदेश का समाचार सुनेंगे, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो कहीं।

0: लेकिन
1: हाँ, सबसे बड़ा रुपया रुपया तो होना ही चाहिए जीवन में, उसे अपना आगे बढ़ाने के लिए, काम में लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए रुपया अवश्य जरूरी है। ये सुंदर सा गीत स्पेशल स्पेशल मांग किया गया है।

मेरा बालम इतना दूर कि उनसे नैना लड़ गए। उसके बाद आपके लिए है ये सुंदर सा गीत एक बार फिर यहाँ से फिल्म जादू से आपके लिए पेश करेंगे। फिल्म जादू ने कंटेन एन फेफ तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म लता जी के आवाज

प्यार की हो गई जीत फिल्म जादू से यहाँ से हमने श्रवण की है और कह रहा है मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, हम मंजिल पे ना पहुंचे तो उसे रास्ता नहीं कहते, और दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते मेरे दोस्त। जिंदगी भर साथ निभाना उसे ही सफर हम सफर कहते हैं। कल कोई मुझे याद करे क्यों क्यों कोई मुझे याद करे, कल कोई मुझे याद करे क्यों कोई मुझे याद करे, मुसाफिर जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। यहाँ से हम चले दुनिया के मजा ले ले, दुनिया के मजा ले ले मेरे दोस्त, दुनिया के मजा ले ले। फिल्म का नाम बहार, इस बार है शमशाद बेगम जी के आवाज में।

सुरैया जी के आवाज़ में यहाँ से हमने सुने हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाते क्यों हो, दो पल की जिंदगी के दो पल की जिंदगी देकर दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है। और जो किस्मत में नहीं होते तो किस्मत उसे मिलाते क्यों है।

शमशाद बेगम जी की आवाज में स्पेशल स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम बन गया है आपके लिए। यहाँ से जिंदगी का सच बस इतना है मेरे दोस्त, जो अपना हो वही सबसे ज्यादा रुलाता है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना जिंदगी में ये बात कि कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। समझ में आए ना मेरा दोस्त? और कहते हैं कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है, कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है। जब बुरा वक्त चलता है तभी तभी हम तन्हा हैं। बाकी हिम्मत ना हारो, तन्हा में आप तन्हा जब होते हैं तो आपको सोचने का वक्त भी मिलता है और वहीं से आप बढ़ते हैं, ग्रोथ होते हैं।

शमशाद बेगम मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम सावन 93-95 तक ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ मेरे दोस्त, ऑल दोस गोल्स। इसमें आप सुनते होंगे कि ये साज और संगीत, गीत का धुन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया गया है, कितना अलहदा है, कितना सुनहरा है, कितना अच्छा लगता है भी सुनने के लिए। तो यहाँ से इस बार है आपके लिए फिल्म आर पार से 93-95 तक के शमशाद बेगम जी की आवाज़ में

title song film Arpar 1954 के पिक्चराइज किया फिल्म शमशाद बेगम जी की आवाज में सुने। स्टार कास्ट इसमें है श्यामा, गुरुदत्त, शशिकला और कुमकुम जी। और कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ से हम बता दें आपको कि जिंदगी जिंदगी ना किसी से नाराज होकर जियो, जिंदगी में ना किसी से नाराज होकर जियो, ना किसी को नाराज करके जियो। जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी वाकई में पलक झपकते में यूं ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि जिंदगी बहुत छोटी है। सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहा कर, खुश होकर जियो।

0: 1946 ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है मेरे दोस्त। म्यूजिक डायरेक्टर इसका है नौशाद जी, डायरेक्टर है महमूद खान और गाने वाला है सुरेंद्र और नूर जहान।
1: दुनिया मेरी जवान है, आवाज़ दे कहाँ है।
0: यहाँ से जो आप सुन रहे हैं उस जमाने के लोग, तो उनका याद जो है वो ताज़ा हो गए होंगे, तो ये भी आपको बधाइयाँ हैं कि पुरानी यादें जो अच्छे अच्छे यादें उसे ताज़ा हम कर ले तो कितना अच्छा होगा, रौनक हो जाता है चेहरे पे।

एक बार फिर आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है आज के प्रोग्राम में, इस पल के प्रोग्राम में। खामोशी से मतलब नहीं, खामोशी से मतलब नहीं बातों से है मेरे दोस्त। दिन तो गुजर ही जाएगा, मसला रातों का है। पल ये समय आपको बहुत सारे बधाइयां दे रहे हैं।

यही तो बात है, कल हो ना हो आज तो है, ये पल तो है, इसे में इसी के एक अच्छा यादगार बना लो। मौका इसी पल में है। कल हो ना हो टाइटल सॉन्ग से हमने सुने सोनू निगम जी के आवाज में, रोज सुन सकते हैं इतना मधुर आवाज में, और इसमें कितना मतलब।

स्पेशल स्पेशल सॉन्ग्स आपके लिए चुनकर और लाई हूँ आज के वक्त में। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से हम सब जुड़े हैं, स्पेशल स्पेशल आप ही के लिए है।

कि ये मेरे दोस्त, इसे जीने के लिए सिर्फ दो ही उसूल बना लो। हाँ, सिर्फ दो, रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। जिंदगी के हम सफर में, जिंदगी के हम सफर में हो तो बात पे यकीन तो नहीं था, पर तुम आए तो यकीन हुआ। और सफर जो है मोहब्बत ही से भर गया है।

कलम दिल चाहता से सुने हम शेखर महादेवन शान और के की आवाज में कि दिल जो भी कहे परवा नहीं, हम तो अपना राह सीधे चल रहे हैं। इन लीफन हु द्रोक यह ओक है मैन लीफ मेंस भाइयों बहनों इन लेफन हु द्रोक यह ओक है नेम द तैत ओम मैच दीर बारन त प्रातन वा दू य आंदर्स में दि तैत अस दर नीत मेर सें। अच्छा समय अच्छा गीत आपके लिए हमारे अच्छे अच्छे लोग जो सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। दुनिया के जिस गली में आप जहां भी जैसे भी हो आपका इंटरनेट है तो आप वर्ल्ड वाइड सुन सकते हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

हाँ के घुंघरू टूट गए। इसी वक्त वही से मैं यहाँ सोचकर और सोचते रहते कि घुंघरू कैसे ही टूट गए पता नहीं। मेरे दोस्त कहते हैं कि ये कहते हैं कि जैसे सोचोगे वैसा ही बनोगे। विचार ही आपकी पहचान है मेरे दोस्त, विचार ही आपके पहचान है।

0: फिल्म वॉर से निकाल दिया है जय जय शिव शंकर। सीटी भी बजा दी है, लेर ते फर्ट्रोवन द हेल वेरल ट्वेफल्ड।
1: मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, आपको आज वो बात बतलाने जा रहा हूँ जहाँ पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यानी मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। मित्रों, इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जिस प्रकार मित्रों, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मित्रों, बार बार मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। आप भी, मैं भी, सभी लोग मित्रों, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। मित्रों, आज में जी ले।

मित्रों, कल घर को जाना है, मतलब सभी लोग दुनिया छोड़कर एक दिन जाएंगे, यानी हम सभी मरेंगे एक दिन। कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं। गरीब, धनवान, ताकतवर, दुर्बल, सभी जाएंगे। तुम भी, हम भी। मित्रों, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुराई कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो जो दुख सुख आपको मिलता है ये किसी के कारण नहीं है। कभी कभी हम उंगलियां दिखाते हैं उनके कारण, वो कार्रवाई से ठीक है, मगर आपका कर्म के अनुसार सब कुछ यहां मिले है। तुम्हारे करतूतों के कारण दुख सुख प्राप्त हुए मित्रों। और जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच, ध्यान करना, सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में आपको खोज लेगा, आपको खोज लेगा। ऐसुकुयू भगवान कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हैं, ये भगवान बोला था है। मित्रों, श्री कृष्ण जगत के स्वामी है, उनकी शक्ति कण कण में निवास करते हैं। भाई बहनों, छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट अनुभव कराता है। जैसे आपको दुख किसी ने दिया, मारपीट कर दी, तो आप रोते हैं, भगवान हमके मार दे। आप कहते हैं, देखिए भगवान तो के का करियो, लुकू सहंगा दो दू नंगायू। तो ऐसे मुर्गियाँ भी, ऐसे बकरियाँ भी, सभी लोग को पीड़ा होती है मित्रों। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना, किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना है। किसको? ईश्वर को कष्ट देने के समान है। तो सबसे मिल कर रहो और ना सिर्फ बोलते रहो हम तो सबसे मिल के रहीला, हाँ हम किसी के ना देख के जरीला, तरवेल यू ना एस्तमंग दो सबके देख के जरे है, अनभली मनावत है, पसो है खबरदार। मित्रों, दीपक का जीवन इसीलिए, सुनिए, दीपक का जीवन, दीपक मतलब दिवाली, इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है, दूसरों के लिए। मतलब आप भी दूसरों के लिए जिए ना, अपना भलाई करिए, दूसरों के भी भलाई करिए। हम दूसरे के काहे भलाई करी, पहले वापन करी मित्रों, ठीक है, करते रहो जैसे जिए, चलते रहो। हमारी आस्था की प्रतीक्षा तब होती है मित्रों जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कुछ भी ना मिले फिर भी भगवान को धन्यवाद देते रहना। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आपके विचार होंगे दोस्तों, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीचे आओगे, नीचे आओगे, यो फादों, और
अच्छे विचार रखोगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे मित्रों, ऊंचाई पर जाओगे।

मित्रों, विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। क्या बना रहे? खोने का डर। मित्रों, और भगवान कहते हैं, चार वेदों का अर्थ नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, अनात्रो भी, मगर मित्रों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मनुष्य समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म यानी मतलब जान ले तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा, तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा मित्रों। मगर हम तो कोशिश नहीं करते हैं जीवन के मतलब समझने के लिए, सोचते हैं खाओ पियो मस्त रहो, मिलीप स्वीति, पैसा है, सब कुछ है, ये बात नहीं है दोस्त, बात ऐसे नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, जैसे आप और हम करते हैं। अरे बप्पा मर जाइए तो का करो, मैया रे मैया है। तो जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। फर्क सिर्फ यही होता है मित्रों कि हम जान नहीं पाए हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या नहीं थे, कहाँ रह ली हम पिछले जन्म में, यही तोरिया हम लोग ना जान पाएला, तभी तो दुख होवे है मित्रों। मगर भगवान फिर भी कहते हैं ना कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छाई तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है मित्रों। मगर हम सोचते हैं कि भगवान तो हमके ना सोचत है, भगवान दूर हो गए हमसे, ऐसी बात नहीं है मित्रों, ये बात नहीं है। मित्रों, इस भजन को सुनकर आप अपने जीवन को शक्ति

मुलाकात आखिरी हो जाए, इस भजन को जरूर सुनिए आप, पूरी भजन को सुनना। धरती पर दोस्तों, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य दोस्तों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ऊंचा नीचा, जाति पाटी, सब अपने कर्मों से बनता है मित्रों। कुछ पाना है, ध्यान करना, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, दूसरों पर नहीं, अपने पर भरोसा कीजिए और परमात्मा पर, क्योंकि सहारा कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं दोस्तों। और धर्म, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मित्र, गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। ये मतलब की बात है मित्रों, ये मतलब की बात है। और आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ध्यान करना कि आप क्या है, बल्कि ये इसे तय होता है कि आप मित्रों, कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता

मित्रों, इस गीत में हमने बतलाया है कि ना जाने कब आखिरी रात, कब आखिरी बात, कब आखिरी मुलाकात इत्यादि इत्यादि हो जाए। मतलब है कि जब दिन भर आप अपने पति पत्नी से, पति पत्नी से, बाल बच किसी से भी झगड़ा करते हो, खूब झगड़ा किया, मस्त धड़ाधड़, रात को सोने जाओ तो बोल दो कि देखो खूब झगड़ा किया है हम लोगों ने, मगर आप सोने जा रहे हो, आराम से सोएंगे, आ राम राम आ, तो आराम से सोएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब झगड़ा खत्म, कल सुबह जब जागेंगे फिर से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों, मगर रात्रि को सोने से पहले हमेशा झगड़ा को सलाह कर लिया करो, क्योंकि ना जाने उस रात आखिरी रात, उस रात आखिरी बात, उस रात आखिरी मुलाकात हो गई और एगो टपक गए सवेरे और झगड़ा से गई ले सूते, दन हैप्पी एंड खरू तो प्रॉब्लम, बहुत बड़का प्रॉब्लम आपको मित्रों। खुशी के लिए काम करोगे, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी मित्रों, खुशी जरूर मिलेगी। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, ध्यान करना, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छे चीजें आपके जीवन में वापस आती है, हाँ वापस आती है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये निश्चित बात है, ये प्रकृति के नियम है मित्रों, यही प्रकृति का नियम है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति मित्रों, यही सच्ची संपत्ति है। हाँ, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने की, ध्यान करना, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने ये वाला द्वार है। मांगो नरक में जाए तो रोज झगड़ा करो ना, क्रोध करते रहो, दशीफायक हुआ वो लोग मित्रों। क्रोध करने से, ध्यान करना, क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। कई बार आप अपने ही नुकसान कर बैठते हो और सोचते हो कि हम का कर बैठली है, तो हम दूसरों को दोष देते हैं मित्रों। दूसरों को दोष देने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या बोलने जा रहे हैं, व्हाट था एग्जैक्ट, क्यों कहे के हम ऐसे बाटी, काने की नित खवून सैन जैसे नॉर्मल रहल जाए प्यार प्रेम से, क्योंकि कल हम भी आप भी तो मरेंगे, तो वारों दी प्रॉब्लम हम ना समझ पाए हैं कि प्रॉब्लम हुआ काहे के मित्रों, काहे के है।

मित्रों, भगवान कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। आप बचते हो क्यों? आप धड़ाधड़ क्रोध करते हो मित्रों, कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें, कोशिश करें, मुक्ति करें, और चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है। कोई आपको कुछ बोले, चुप रहो, वो खुद समझ जाएगा कि वो बेकार को बक रहे हैं। है? तो चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। माफ करना और ना बोलना कि हम ना माफ करा, मीने हो फरकीफें, तब मरो लेके, अगले जन्म में कहाँ जइयो, का करियो, पता ना है, भगवान जाने। तो माफ कर दो, का हो जाए, तुम्हार कुछ थोड़ा लाश हो जाएगा, आप जीत जाओगे। तुम में कामियां भले ही हजारों हों, गलतियां भले ही हजारों हों आप में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो मित्रों, खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर यानी अच्छा रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे मित्रों। जब भगवान आपको कुछ देना चाहता है ना, तो पहले इधर उधर सब बिखेर देंगे, पिसलवा इधर उधर फेंक देगा, कोई देखेगे तुम्हें वो सब उरी है तुम्हें वो क्या कहते हैं, खदेलत है। जब आप घबराओगे नहीं, अच्छाई से रहोगे, प्रेम से, तब धीरे धीरे भगवान आपको सब देने लगेंगे। तो आप सोचेंगे हैं ये कैसे, हम तो इसे ना मंगले, हम तो ये कमोना कर्म फिर भी हमके मिला था। सब भगवान की खेल है मित्रों। कोई समझ पाया है कि आप ही समझोगे? हैं? नहीं समझ पाओगे मित्रों। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है मित्रों, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। और ना जैसे आप हैं, अच्छा आप नहीं, आपके बगल वाले होंगे, तो छोड़ो, आप नहीं तो आप सत्य की राह पर चलते हैं मित्रों। तो मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका भाग्य आपके हाथों में है मित्रों। गोरे में कहे गए हैं कि द रेहिसर फाइन टू कम्स ऑफ यू फॉर्म द लीफ दैट बेन इज हेल्प और ना कोई और। सत्य से मित्रों धन ध्यान करना, हम का बोलत हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। आप तो जानते हैं, आप तो करते हैं ना छल कपट वगैरह, चोरी चपाटी, फ्रॉड, लूटमार, नहीं तो आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको आपका कमाया हुआ धन सुख देंगे। और जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते मित्रों, तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। तो आप क्यों सिद्धांत को बदलेंगे? रास्ता बदल लो, दूसरा तरीका से दूसरा काम ढूंढ लो, हैं? उसमें क्या बात है मित्रों? तो गलत काम मत करिए। नगो दूल्हा सानी अंदर से प्रॉब्लम।

मित्रों, जब आप भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम अपन जीवन आपके हाथ में सौंप दे ली, तो उस वादा को पूरा करना भी चाहिए, ना बाद में दूसरों को गाली देने लगो, अपने खुद करने लगो। तो भगवान की कहा है, बोले कि भगवान तू हमारे लिए सब कर, खबरदार लिलाओ लाओ चीज ना बोला करो। मित्रों, किसी के संगत से आप ध्यान करना हम क्या बोलते हैं, किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। मित्रों, आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। और एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप नहीं, हम काहे ओकरे वाला ली, हम काहे उसे सब कुछ सीखी। एक मैन बेहतर दान है ऑफ दन हार, यू लाओ खोपड़ी ठीक ना है तो अच्छा चीज देखो तो उससे सीख लो, सीखो। उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं करो, नहीं तू ही बर्बाद होंगे। क्या होंगे? बर्बाद होंगे। देखो ना आज तक कहां पहुंच लो है, आपका बात नहीं, आपका बात हम ना बोलत हैं। अभी नाराज हुई है कि परदेशी बाबा हमके का बोलत है, वो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है ओके हम बोलत हैं। मित्रों, और संबंध बड़ी बातें सुनिए, संबंध बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अपने भौजी देवरनिया या कोई भी रिश्तेदारी को बड़का बात ना सुनाओ, तू धनवान है तुमको बड़का बात बिहान गिर जइयो, है रावण भी गिर गए ना, तो तू बचियो। आपका बात नहीं बोलत है, क्षमा आपका नहीं, किसी और के बात बोलत है। मित्रों, और यदि सब कुछ खो कर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, ध्यान करना, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। कर्म ही सबसे बड़ा धन है। मित्रों, कर्म करते रहो, करते रहो, कर्म ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, और ना ही कुछ और, जैसे लोग बतलाते रहते हैं, कहानी का लोग आप लोग को सिखाते रहते हैं। मित्रों, खबरदार इन सब चीजों से बच के रहना, बच के रहना।

मित्रों, हम अनेक तरह की भजन गाते हैं, समझाने के लिए वो खुद भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। मित्रों, परमात्मा कहते हैं कि उपदेश देते हुए कहते हैं भगवान, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। आप और मैं कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, जिससे हमारा अगला जन्म या भविष्य बनेंगे, और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कोई जरूर कर्म करो, अच्छा कर्म करते रहो, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना जो कर्म करते हैं उसका परिणाम ना सोचो कि का मिली का ना मिली, वो छोड़ दो। उसके किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करते रहो। कौन फल मिले या ना मिले, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिली है। एगो पुराना कहावत, जो बोएंगे वही काटेंगे आप ना। आम के पेड़ बोइयो तो कहाँ रोज के फूल मिली है, समझ लेना मित्रों। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं भगवान कि अपने कर्म हमेशा समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो मित्रों, और बाकी फल के चिंता मत करो। और उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो, भगवान बोलत हैं कि हमको समर्पित कर दो सब जो करत बाटे आप। इस मार्ग को अपना कर मित्रों तो मुझे प्राप्त कर सकते हो, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, भगवान बोलत है, हम नहीं बोलत हैं। तो अच्छा काम करो फिर भगवान के प्राप्त करो, और बुरा काम करो तो फिर राक्षस बनो ना, मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। भगवान बोले अच्छा कर्म करने से तुम मेरे प्रेम के भागीदार बनोगे, और का चाहिए आपको है, इससे अच्छा चीज ना और कौन सी मिलेगा आपको। मित्रों, हम तो कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आप भी कोशिश करिए, भगवान जाने आगे का होगा। मित्रों, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है मित्रों, कल वो किसी और का था, ध्यान करना, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे, कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। अनुदे भगवान सबसे बड़ा मित्र है। खुशी आजादी पर निर्भर होती है मित्रों, आजादी, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं, कितने मेहनती हैं, कितना मेहनत करे बाटे तू।

मित्रों, इस भजन के द्वारा मैंने आपसे बताया कि उमरिया बीती जाए, उमरिया चलत है, घड़ियां टिक टिक टिक टिक चलत है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पता है कि आगे में एको बड़का होल है जो इंतजार करत है, वही में गिरेंगे। जितना खेत कमाई है सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ एक ही छोटी सी जगह दुई मीटर लंबा हो या ताकत ब्रेथ है और गहराई है, या तुम्हें आग में झोंक देंगे, बारबेक्यू कर देंगे, बस खलास। तो मित्रों, ये जो हमने आपसे बतलाए हैं इसे कुछ सीख लो, सीखो, हम भी सीखते हैं। हम बोलते हैं मैं, फिर भी हम सुनते हैं क्या बोलत बाटी, बाद में हम सुनत बाटी भी क्यों, बोलते समय में ध्यान न रहे कि क्या बोली, खोपड़ी में आवे बोल देवत है तो बाद में सुनत है, तो हम भी जीवन में उतारने की कोशिश करत हैं। तो मित्रों, आप भी जरूर कीजिए ना, जीवन में उतारिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवाते रहना जो आपसे मिल चुके हैं या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, तो हम आपसे मिल करके बहुत खुश हैं। भगवान आपका कल्याण करे, खुशी से रहो, बुराई छल कपट किसी से ना करो, चोरी चपाटी ना करो, आपके सामने आएगा। मित्र, प्रेम से रहो, विश्वास के साथ रहो, भगवान पे भरोसा करो, कल्याण हो, कल्याण हो।

0: यार ये बानी और प्रीत का आमना सामना ना हो जाए यार।
1: अरे लंदन है लंदन यार, दादर स्टेशन थोड़ी है कि बानी और प्रीत एक दूसरे से टकरा जाएंगे।
2: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?

द टाइटल भी आप सुन रहे थे है जवानी तो इश्क होना है। इसी फिल्म से कुछ और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चुनरी चुनरी

ये जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से हमने पेश की है आ जाना चूल्हे मेरी चुनरी सनम। पति पत्नी और वो है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रूप दी रानी।

पति पत्नी और वो इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं रूप दे रानी। भूत बंगला है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से आप सुनेंगे ओ सुंदरी।

फ्रॉम द मूवी भूत बंगला से हमने पेश किए हैं ओ सुंदरी। स्टेबिन बेन और जुनिता गांधी की आवाज़ में आप सुनेंगे तेरा हो जाओ। फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है।

हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सरजू, जो आज का प्रोग्राम 12 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। आज मंगलवार है, फिर अगस्त हो चुका है 2026 में हम सब है। जहाँ तक आवाज़ पहुँचे वहाँ तक हमारा ढेर सारा प्यार पहुँचे, मोहब्बत पहुँचे, पैगाम पहुँचे। सुबह हो चुका है, हर एक जो घर से अपना नौकरी पे जाता है बचा के संभल के जाना। ये फाहम हिंदुस्तानी रेडियो है दोस्तों, और जहाँ पे दुख है हर एक के दुख में हम शामिल है, जहाँ पे सुख है हर सुख में हम सब शामिल है। पूरा टीम फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के पूरा टीम है, पूरा मेंबर से जो आप लोग के साथ है। आज मैं कुछ ऐसे ऐसे गाने को सुनाऊंगा जो आपको पसंद है। मैंने कहा था हर दिल से यह नाता है, हर दिल से रिश्ता है, और सॉन्ग चलेंगे जो आप चाहते हैं, आपके मन वाली पसंद मन पसंद गाने को हम चलाएंगे। आज भी होगी कुछ प्यारे प्यारे बातें, ऐप द्वारा ऐप से हम सब कुछ बातें कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम है, कुछ भजन चलेगी और कुछ गाने हैं जो मैंने चुन कर रख चुका हूँ, प्रोग्राम को बनाकर आपके कानों तक हम पहुँचाऊँगा। तो लीजिए दोस्तों हम चलते हैं, कुछ ऐसे भजन है, मैं मुकेश का भजन रखता हूँ, हम सब मिलके सुनेंगे। जो भी अपन पूजा कर रहे हैं उसे भगवान इतना शक्ति दे, हर एक काम उसका पूरा हो जाए, और जहाँ दुख है भगवान उसे सहन शक्ति दे अपना दुख को सहने के लिए। तब तक के लिए हम चलाते हैं इंसान हंसे या रोए।

जी हाँ दोस्तों, कहानी तो ऊपर वाला ने लिख के हम लोग के भेजा है और जैसे कहानी लिखा है वैसे चलेगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते आगे। पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की एक बहुत ही अच्छी गाना है, जैसा सुबह है मंगा का प्रोग्राम है।

जी हाँ दोस्तों, सुबह का प्रोग्राम में कुछ भजन की तरफ से चल रहा है, जैसे भजन जैसा है। ये गीत भी बहुत बढ़िया है सुबह में सुनने के लिए, और हर एक को शुभ सुबह हो, ये पूरा टीम की तरफ से है। चलो हम ले चलते हैं मुकेश की जी भजन, पितुमात सकाय स्वामी।

जी हाँ दोस्तों, पितुमात स्वामी शका अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज से। दोस्तों चलो तमने चलते पद्मश्री मोहम्मद रफी की तरफ।

दोस्तों, बिन मांगे सभी कुछ मिलते ही, इसलिए कहता है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है।

के हृदय श्री राम बसे। सच बात है, हर एक के दिल में भगवान ने जगह बना रखा है। चाहे अल्लाह हो या भगवान हो या क्रिश्चियन हो, सभी के दिल में भगवान बसता है। इसलिए कहा है मुकेश ने भी आप लोग को सुनाया है दोस्तों, क्या धन में सुनाया है, सुबह का प्रोग्राम है मंगलवार, लोग अपना पूजा करते हैं और हर एक पूजा करने वाले के लिए मैं ये पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी को आवाज़ में हम आप लोग के पेश करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, भगवान का घर है। अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री मोहम्मद रवि की आवाज में, हम आपको ले चलते हैं भजन मुकेश।

कहते हैं प्रभु आपकी याद में मैं अपने आप को भूल गया। क्या बात है, क्या अच्छी बात है कि आपकी याद में मैं खुद को भूल गया।

मुझे अपने शरण में ले लो राम। पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ सभी आप सुने थे। और क्या सुबह का प्रोग्राम है, अच्छी अच्छी भजन है, ये भजन का रूप में है और अच्छी अच्छी भजन है। चलो हमने चलते एक बार फिर से मुकेश की आवाज़।

दोस्तों मुकेश की आवाज से भी आप सुन रहे थे। चलो दोस्तों हम ले चलते हैं फिर से एक बार पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज आप लोग को सुनाते हैं। मंगलवार है, सुबह का प्रोग्राम है और आपके घर तक पहुंचाते हैं ऐसा भजन के रूप में है दोस्तों।

0: जी हाँ दोस्तों, सुख के सब साथी दुख में कोई नहीं, ऐसा होता है इस दुनिया में। सुख में सभी कोई है, दुख में आगे पीछे घूमिए तो कोई ना दिखाना, ऐसा बात है। हर एक जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता है ज़रूर। ठीक है दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ आज का प्रोग्राम जो है ये भजन है। अभी हम चलेंगे कुछ न्यूज़ से कुछ रिक्लामों की तरफ, उसके बाद फिर से हम कुछ भजन चलाएंगे आधे घंटा, उसके बाद हम चलाएंगे आज दो या तीन फिल्म के गाने आप लोग को सुनाऊंगा, जैसे कि रोती कपड़ा मकान और फिल्म आईना है। ये सब फिल्म के गाने हम आप लोग को सुनाने वाले हैं आज, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इन फिल्मों के गाने को मांग किया है। हम हर के लिए ये गाने को ज़रूर यूज़ करेंगे और आपके तक पहुंचाएंगे। मंगलवार का प्रोग्राम है, जैसे मैंने वचन दे दिया है, काफ़ी लोग है, शांता कोहबीर है, काफ़ी लोग हैं सुनीता है जो मेरा प्रोग्राम में मेरे साथ दे रहे हैं, वो सब इस गाने को मांग क्या है मूवी बोले पूरा फिल्म के गाना मुझे सुनना है। तो हम चलाएंगे अभी न्यूज़ और बयान, उसके बाद हम चलेंगे कुछ भजने, एक दो भजने और आधे घंटे तक, उसके बाद हम चलाएंगे कुछ ऑल्ट गोल्ड फिल्म के गाने हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736523747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimumsummerfestival.nl.
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रिक्लाम और न्यूज। जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं आगे। हम बताना भी चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है आज चलेंगे, आज है मंगलवार, आज हम प्रोग्राम चलाएंगे जो भी फाहन को सुनते हैं, हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, और उन सब सुनने वालों के लिए आज हम कुछ गाने चलाएंगे जो लोग ने मांग किया है। काफ़ी लोग है, इतना नाम, इतना ढेर नाम तो बहुत ज़्यादा नाम है सबके नाम ले रखा, लेकिन काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, उन सब पसंद करने वाले के लिए मैं कुछ गाने को रख चुका हूँ। अभी एक चौ दो तीन भजन और चलेंगे, उसके बाद हम चेंज करेंगे प्रोग्राम को। आप सुनते रहे ना, हमारा साथ देना। आप है तो हम है, हम है तो आप है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज का प्रोग्राम है, जैसे आप सब जानते कि मेरा सवाल था, एक किलो खौत और है भी बा कि एक किलो रुई वच या एक किलो पिसान कौन और हे बीबा। शुक्रवार के हर एक फरमाइश मैं पूरा करूंगा, जो भी गाने मांगते हैं, जो सही जवाब देगा उसका हक बनते ही इस एक गाने मांगने के लिए। आज मैं चलाऊंगा आप सब के लिए जो फहोन हिंदुस्तानी रेडियो पे चूने, उन सब सुनने वालों के लिए मैं ये प्रोग्राम को चलाऊंगा। 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा। सुनते रहना, काफ़ी फर्रासेंगे आपके लिए, बस आप सुनते रहना।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गुलशन कुमार और हरिहरन। चलो हम आपको ले चलते ही हरिओम शरण की तरफ, दुर्गा मैया के दुर्गा माता का एक भजन दोस्तों।

जय जय माँ, जय जय माँ देवी माता की भजन था हरिओम शरण की आवाज़। एक बार फिर से चलते हैं हरिओम शरण की तरफ।

प्राणों में पागल प्यार बसाकर चला गया। हरिओम शरण की आवाज अभी आप सुन रहे थे दोस्तों। एक बार हम फिर चलते हैं हरिओम शरण की तरफ। ऐसा प्यार बहा दे मैया।

ही सह प्यार बहा दे मैया हरिओम शरण के वास। चलो आप लोग के लिए चलते हैं जगजीत सिंह के तरफ। एक देखा जाए तो एक माता रानी के भक्ति गाना है, भजन है, और हम सुनेंगे सुबह का प्रोग्राम है दोस्तों। अभी 10 बजे के बाद हम आप लोग के जरूर गाना सुनाएंगे और देखा जाए कौन कौन सही जवाब को दिया भी मैं बात करूंगा। ऐप द्वारा बात होगी और गाना भी होगी। प्रोग्राम के नाम है सवाल जवाब। सवाल जवाब प्रोग्राम होगी दोस्तों भी 10 बजे के बाद।

जी हाँ दोस्तों, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ हर जगजीत सिंह की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। घड़ी की तरफ देखा जाए दोस्तों तो 5:30 हो चुका है। 10 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम रहेगा, भजन प्रोग्राम 10 बजे तक रहेगी। उसके बाद हम आपसे ज़रूर मिलेंगे सवाल जवाब में।

जी हाँ दोस्तों, मन मेला और तन को धोए। अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज। हम आपको ले चलते हैं आशा भोसले की आवाज में। एक भजन आप लोग के सुनाने वाले हूँ। आशा भोसले अब तो नहीं है दुनिया में, लेकिन उसका आवाज अभी दुनिया में है। वो जी रहा है हमारा बीच, आशा भोसले।

भोसले की आवाज़ अभी आप सुने थी कि अंदाज में इस भजन को गाया है। सुबह का प्रोग्राम कौतवतीन हो चुका है, चलो हम एक बार फिर से आपको ले चलते हैं हरिओम शरण की आवाज़।

जी हाँ, भगवान पार करो। ठीक है, अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज। दोस्तों, एक आखिरी भजन और चलेंगे। गोविंदा बोलो, हरि गोपाल बोलो। बढ़िया आवाज है, बढ़िया भजन है। इसी भजन से हम भजन प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सवाल और जवाब।

0: जहां गोविंद बोलो गोपाल बोलो। यहां तक था भजन का प्रोग्राम। दोस्तों हम चलते हैं कुछ न्यूज और कुछ रिक्लाम की तरफ, उसके बाद हम आ रहा है सवाल प्रोग्राम, सवाल और जवाब।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है,

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक था न्यूज और रेखलाम। जी दोस्तों, मेरा सवाल था एक किलो सोना और हेबीबाग के एक किलो सुकरू काफी अच्छी ढेर मुंतवर बा सही जवाब है और काफ़ी है जो सही जवाब नहीं है। इसलिए हर मंगलवार को हम आपके लिए फरमाइशें चुन करके बजाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो आज जो लोग गाने को यूज़ किया है और मांग किया है, और देखा जाए तो दो तीन फिल्म का गाना है जो लोग आज मांगा है, वह फिल्म रोती का परा मकान, फिल्म आईना और फिल्म क्रांति के गाना लोग मांग किया है। इसलिए मैं सभी के लिए उस तीन फिल्म के गाने हम सुनाऊंगा। हर एक जो मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, रेडियो फाहुन को सुनते हैं, उन सब सुनने वालों के लिए मैं तीन मूवी के गीत निकाल करके आपके कानों तक पहुंचाऊंगा। ये है मंगलवार का प्रोग्राम मेरा, अब से दो घंटे में और रहूंगा। दो घंटे सिर्फ तीन फिल्म के गाने हम आप लोग के सुनाऊंगा। प्यार से बैठ के सुनिए घर पे। हर एक को नाम मैं लूंगा जो जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं, मेरा सही जवाब को दिया है, और गलत जवाब पे भी आप सुनिए प्रोग्राम, क्योंकि मैं आज फरमाइशें आप नहीं देंगे लिख के मुझे ऐप के, मैं अपनी तरफ से आप हर एक के लिए कुछ गाने पेश करूंगा। यहाँ से दमकानों तक पहुँचाऊँगा, जहाँ तक की आवाज़ भी पहुँचे, दूर दूर से लोग सुनते हैं, जर्मन से, स्पेन से, सुरीनाम से, जहाँ से लोग सुनते हैं, हर एक के लिए मैं इस प्रोग्राम को बना कर सजा करके आप तक पहुँचाऊँगा। मंगलवार के प्रोग्राम है और मेरा प्रोग्राम है सवाल और जवाब। सवाल और जवाब में आज हम आप लोग के सुनाने वाला है तीन फिल्म के गाने। पहला फिल्म के गाने हम आप लोग को सुनाते हैं, जो देखा जाए शांता सार्जू जो फोस्को तो सुनते हैं, समानता सुनते हैं, काफ़ी लोग हैं जो सुनते हैं। सही जवाब को दिया है, हम आप लोग के फरमाए से सुनाने वाला हूँ। तीन फिल्म के गाने हम आप लोग के सुनाने वाला हूँ। चलो हम आप लोग को ले चलते हैं फोर्स कोटन की तरफ। सुनीता जी प्रोग्राम को सुनते हैं, ममता जी प्रोग्राम को सुनते हैं, क्रिस प्रोग्राम को सुनते हैं, बिश्ता प्रोग्राम स्पाइर से सुनते हैं, गोली प्रोग्राम को सुनते हैं, हमारा तेक चेंजकारों को फरमासिक हर एक लीडर प्रोग्राम को सुनते हैं, ऐसे ऐसे काफ़ी लोग हैं जो प्रोग्राम को सुनते हैं। हर एक के लिए मैं रोती कपड़ा मकान से एक गाना को चुन करके रखा है, जिसे देखा जाए लेकिन तीन फिर सही फंत का ये मूवी है। लता मंगेशकर मुकेश इसे गाया है, इसका लायरिक जो है फरमा मलिक और म्यूजिक कंपोजर है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसमें काम किया है मनोज कुमार, जीनत अमन, शशि कपूर, मौसमी चक्रजी, अमिताभ बच्चन और प्रेमनाथ। चलो हम आपको चुन चुन के गाने को सुनाते हैं तीन मूवी के।

जी हाँ, मूवी ऋतिक कपड़ा और मकान का ये टाइटल सॉन्ग से जो मुकेश और लता की आवाज थी। दोस्तों हर एक जो प्रोग्राम को सुना है, पसंद किया है, सवाल पे जवाब दिया, हर एक के लिए ये गीत मैंने सुनाया है। और हम चलते हैं फिल्म, जैसे वादा किया, फिल्म अनीता नेकंदिन जैसल सीफंदर की, जिसमें मनोज कुमार और शादना काम किया है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल इसमें इसका म्यूजिक जो दिया है वो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल है। चलो हम सुनते हैं कैसे करो प्रेम की मैं बात, ये भी माना है सुनीता नंदा ने इस गाने को माना है। और हर एक के लिए मैं इस गाने को बजाना आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा आज का प्रोग्राम है, हर एक जो प्रोग्राम को सुना है और सही जवाब को दिया है, हर एक के लिए फोन के जितने लोग सुनते हैं हर एक के लिए आज मैं रेडियो पे इस गाने आप लोग के नाम करते हैं, क्योंकि सवाल जवाब है प्रोग्राम का नाम।

न बाबा पिछुआ रे बुढ़ा खासा। फिल्म अमिता निकतिन जई फिल्म सस्त की यह गाना है दोस्तों। वादा के मुताबिक हम अपना काम को कर रहे हैं। हम आप लोग के लिए चलते ही एक बार फिर से रुति कपूर मकान और देखा जाए लता मंगेशकर मुकेश और इस गाने को गाया है देखा जाए ठीक से तो ठीक है नरेंद्रा चंचल जानी बाबू कवाल लता मंगेशकर मुकेश की आवाज है। इसके जो म्यूजिक है जो बजाया हुआ है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और जिस कलम से सिहाई से लिखा गया है जिस हाथ से लिखा गया है वो फरमा मालिक है। मनोज कुमार जीना तमन शाशि कपूर मौसमी चक्रजी अमिताभ बच्चन और प्राण इस गाने इस फिल्म में काम किया है।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा

से लेकर पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे।

जी हाँ दोस्तों, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। सच्ची बात है, दुनिया भर में महंगाई तो मार दी से यार दुनिया में सब चीज महंगा हो चुका है और कहते हैं महंगाई मार गई। इस प्रोग्राम को आप लोग अच्छी तरह से सुनना कि आज का प्रोग्राम जो है, आज का प्रोग्राम है सवाल और जवाब। मंगलवार के हम हर मंगलवार का हर एक सवाल के हम गाना नहीं घुमाएंगे, आप लोग गाने मांग सकते हैं। काफ़ी लोग गाने को मांग किया है, हम फ्री दाख के उस फरमाइश को पूरा करेंगे। लेकिन आज स्पेशल प्रोग्राम है, हर एक जो प्रोग्राम को सुनते हैं और हमारे साथ देते हैं, फाहुन के साथ देते हैं, उन सब सुनने वालों के लिए आज स्पेशल प्रोग्राम है हमारे तरफ से और हमारा रेडियो की तरफ से, द एफगिंग लव द लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से आप सब चुने। हमारा पूरा मेंबर, हमारा पूरा टीम की तरफ से आप सब के लिए आज स्पेशल प्रोग्राम है, एल्कदेसदा के स्पेशल प्रोग्राम फरियली लव स्टार जो हमारा साथ देते हैं और तुम सब के लिए आज ये गाना है। एक कौन मुझे लिखा है कि आज मैं मांगता हूँ, ठीक है फरीदा के हम आपका भोजपुरी जरूर सुनाएंगे, लेकिन आज प्रोग्राम को सुनते रहिए, स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम सवाल और जवाब आप सब के लिए। टाइम देखा जाए बेना हलफ एलफ हो चुका है और जहाँ तक आवाज़ पहुँचे हमारा प्यार मोहब्बत दुलार भी पहुँचे, तब तक के लिए हम आप लोग के लिए चलते फिल्म अनिता नेक दिन जैसन जैफन तक के। आज मेरा वादा था 2-3 मूवी आज मैं आपके लिए चलाऊंगा, उनके गाने हम आपके लिए चलाएंगे। चलो हम आप लोग ले चलते हैं फिल्म अनिता।

जहाँ दोस्तों सामने मेरी सांवरिया मूवी अनीता निगम जी फिल्म शस्तक का ये गीत है। चलो फिर चले चलते रुतिका परम काम के एक हाय हाय ये मजबूरी द क्वीन लता मंगेशकर की आवाज़ दोस्तों हम सुनेंगे।

हाय हाय ये मजबूरी रुतिक प्रणाम कान के निकाला हुआ गाना है, लता मंगेशकर की आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम आपको ले चलते हैं अनीता

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मूवी अनीता नीलकंठी जी फिल्म शस्त्र की। हम आपको ले चलते हैं फिर से एक बार ऋतिक परा और मकान पंडित जी तेरे मरने के बाद।

जी दोस्त पंडित जी, मेरे मरने के बाद मूवी रोटी कपड़ा मकान, और हम चलते हैं आगे। देखा जाए, हम आप लोग के फिर जाते हैं फिल्म अनीता, मुकेश की आवाज दोस्तों, गोरे गोरे चांद से मुख पर।

जी हाँ दोस्तों, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें, मूवी अनीता निगंती जी फिल्म जस्त की। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं फिर से एक बार, रोटी कपड़ा और मकान, और नहीं बस और नहीं।

0: और नहीं बस।
1: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम सवाल और जवाब, आज मंगलवार है, देखा जाए 5/4/11 हो चुका है। मैं ये जरूरी समझता हूँ बताने के लिए कि आज जितने लोग प्रोग्राम में मेरे साथ दे रहा है, फाहुन के साथ दे रहा है, यहाँ से नए मेकर अलमेर, ब्रीदा जर्मनी, स्पायर फोर्सकोटन, दिनाक्सा, रोटरडाम, अमस्टरडाम, ब्रीदा, जहाँ जहाँ से लोग सुनते हैं प्रोग्राम को, इन सब के लिए ये गाने जो मैं दो फिल्में के आपको सुना रहा हूँ आपके नाम है दोस्तों। हम आपके लिए इस गाने को चलाते हैं, तार जा रहा है, काफ़ी ऐप आ रहा है और हर एक ने सही जवाब को दिया है कि सोना एक किलो और एक किलो सुकरू इस सेल्फ द बलाइफ सेल्फ, एक किलो बा सब बढ़िया अंतर थे और एक दो था जो कहते हैं सोना और है भी है। नहीं हो सकता है, एक किलो सोना और एक किलो सुकरू इस ब्लाइफ सेल्फ द। ओके दोस्तों, हर एक के नाम मैंने प्रोग्राम को चलाया है, अब हम चलेंगे न्यूज और रिक्लामों को। यूं गया यूं चला,
2: अधिकारियों का तौर आन दराम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar
6: Hindustani
5: Radio.
6: Radio Fahun. Digitale radio. Fahunfm.nl.
7: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws.

जी हाँ दोस्तों, मूवी क्रांति का निकाला हुआ गाना है जिसमें नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज अभी आप सुन रहे थे। लाइरिक से संतोष आनंद, जिस कलम से चलाया गया हाथ और स्याही वो संतोष आनंद है। म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मनोज कुमार, हेमा मालिनी। देखा जाए काफी लोग इस फिल्म में काम किया है, दिलीप कुमार भी काफी लोग हैं जो इस फिल्म में काम किया है, और इंग्लैंड और इंडिया का जो लड़ाई थे ये मूवी बना है, इसलिए वो इस मूवी को वो लोग बनाए हैं, फिल्म क्रांति। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ गलत हो गया था इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम फिर से एक बार लगाते हैं जो गाना भी चल रहा था इस गाने के से पहले।

जी हाँ दोस्तों, मूवी क्रांति आवाज नित मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम एक बार फिर चले चलते हैं मूवी क्रांति की तरफ और आप सुनेंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम ऐसा ही प्रोग्राम है। हर एक जो मेरा प्रोग्राम को सुनते हैं, फोन रेडियो को सुनते हैं, हमारा सारे कोलेगा को सुनते हैं रेडियो पे, उन सब के लिए हम आज कुछ स्पेशल प्रोग्राम को बनाया है। तीन मूवी थे जिस मूवी के गाने हम आप लोग के सुना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते एक बार फिर से मूवी क्रांति। अब के बरस तुझे धरती की रानी महेंद्रा कपूर की आवाज है और ये भी लिखा गया है संतोष अनंत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक है।

0: अब के बरस।
1: जी हाँ दोस्तों, अब के बरस तुझे धरती की रानी। महेंद्र कपूर की आवाज दोस्तों, क्या क्या गाना गा रहे हैं। महेंद्र कपूर हमारा बड़ा फैन है यार, हमारा सबसे बड़ा फैन महेंद्र कपूर है यार। और क्या आवाज है, क्या गाने को गाया है, दिल खुश हो गया है सुनकर। हम सोचते हैं हर एक जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं, हर एक दिल खुश हो गया हो महेंद्र कपूर की आवाज सुनकर। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेंगे। हम ले चलते हैं फिर से क्रांति निकंतन इनन तख्त के, और देखा जाए दिल वाले मेरा चना है चना। आप जानते ना चना के गाना। एक बार फिर से क्रांति को देखिए, इसलिए मैं ये तीन फिल्म के गाना को आप लोग को सुनाए हैं क्योंकि आप लोग एक बार इस फिल्म को फिर देखिए। काफ़ी अच्छे फिल्म है और मतलब बहुत बहुत विशाल मतलब है फिल्म के। और हम आज भी देखेंगे फिल्म क्रांति को, हम ज़रूर देखेंगे। कल मैं ऋतिक अपरा मकान देखूँगा, कल दो फिल्म देखूँगा और फिल्म अनिता। चलो महेंद्र कपूर की आवाज, लता मंगेशकर, मन्ना दे, नितिन मुकेश और शैलेंद्र सिंह हम आपको सुनाते हैं

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये सच बात है, ये गीत जो गाया गया है ये वाह रहे थे, एक सच्ची बात है, गोरा जात ने ये काम किया है, भारत लड़ते लड़ते आज भी भारत अपना देश के लिए बहुत लड़ा है, आज उसका देश बहुत अच्छा चलता है। और ऐसे बात है, गोरा जात बहुत दुख दिया वहाँ पे, जिंदे लोग को दफना दिया गया है, ये गाना जो गाया गया है एक वार है थे, एक सच्ची बात है। ठीक है दोस्तों, हम आखिरी गाना चलाते हैं मूवी क्रांति के, उसके बाद हम कुछ और आप लोग सुनाएंगे। देखा जाए मंदा देई, शैलेंद्र सिंह, नीतू मुकेश, महेंद्र कपूर और लता की आवाज हम सुनाएंगे, लायरिक्स है संतोष आनंद की, लायरिक्स है दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, म्यूजिक है और मूवी निकंतिन एन तख्त है क्रांति।

0: जा दोस्तों, ये यहाँ तक था मूवी क्रांति के गाना। हम आपको ले चलते हैं मूवी कर्मा, जिसमें दिलीप कुमार, नूतन, मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति ने गानों को गाया है। दिलीप कुमार नितिन ने इसमें काम किया है और देखा जाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की म्यूजिक है और आनंद बख्शी का लाइरिक्स है। दोस्तों क्या ये भी ऐसे एक गाना है, एक गीत है जो काफ़ी देश भारत के लिए गाया गया है। अपना देश में इस गाने को गाया गया, काफ़ी गुंडा वहाँ पे भी रहता है ना, उस गुंडे के लिए इस गाने को गाया गया है। अगर आप ये मूवी को देखेगा तो हम सब समझ जाएंगे।
1: कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू।

जी हाँ प्यारे दोस्तों, भी आप सुन रहे थे दिल दिया है जहाँ भी देंगे मूवी कर्मा। ये भी एक बहुत ही अच्छा फिल्म है, अच्छा मूवी है। दिलीप कुमार नूतन ने काम किया है, नजरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अनुप खेर। ये अच्छा मूवी है। इंडिया जो मूवी बनाया है, हर एक मूवी में कुछ मतलब है, कौनो बात है। चलो दोस्तों, हम आप लोग को ले चलते एक बार फिर से मूवी मजदूर नेखंतीन त्रियन तख्त के, जिसमें दिलीप कुमार ने काम किया है। और देखा जाए मंदा कपूर की आवाज है, म्यूजिक एरदी पेरमन हसन कमल का, ये लाइरिक्स जो है हाथ कलम जो चलाया गया है। और हम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना है,

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, हम मेहनत से इस दुनिया को, अभी आप सुनते हैं मेहनत कपूर की आवाज। चलो हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं मूवी करना दे दे दारू। चलो सुनते हैं भाई, दे दे दारू चला है ना।

जद तो भी आप सो रहे थे दे दारू बड़े से हमें काम ये दे दारू आप सुन रहे थे मूवी कर्मा जैकी श्रॉफ अनिल कपूर नजीरुद्दीन शाह किशोर कुमार की आवाज़ मैना कपूर मनहर। ठीक है दोस्तों हम चलते हैं, हम सोचते हैं एक आखिरी गाना हम चलाएंगे, उसके बाद न्यूज़ और कुछ बयान भी रहेगा और उसके बाद हम चलाएंगे गाने को, उसके बाद हमारा फरगाम भाव विदाई लेंगे दोस्तों। आज का हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, हिस्से का प्रोग्राम खत्म हो गया है और ये एक आखिरी गाना हम चलाएंगे, आखिरी गीत चलेंगे और सवाल जवाब हमारा प्रोग्राम बन चुका है, सवाल और जवाब फरीदा को भी होगी। तब तक के लिए हम चलते हैं एक आखिरी गाना, उसके बाद हम जरूर मिलेंगे आपसे।

जी हाँ दोस्तों, हर एक को हम कहते हैं जो मेरा प्रोग्राम को सुना है, सही जवाब को दिया है, और मैं आ रहा हूँ उनके लिए, सही सही जवाब को दिया है। मेरा सवाल था, एक किलो सोना या एक किलो सुकरू और ये भी है, तीन लोग थे जो गलत सवाल दिया, और हर एक सोना है और शुक्र है, सेल्फ द खबेख्त, एन किलो बलाई सेल्फ द।

0: जी सुन लो, यहाँ तक था एक आखिरी गाना और हमारा तुम्हारा साथ यही तक था। हम ये कहते हैं हम एक बार शुक्रवार के फिर रहेंगे। फ्रेडा के हर एक गाने मांग सकता है ऐप द्वारा। मेरा तार का नंबर है 9 0 3 8 0 8 3 3 2। हम आप लोग से कहते हैं बाय बाय स्वाई स्वाई। और एक सवाल करके जाते हैं जो आप लोग मुझे ऐप कर सकता है। सवाल है, एक आंख है तो भी अंधा है, क्या है? मुझे एक आंख है तो भी मैं अंधा हूं, ये क्या है? ये आप इस सवाल पे मुझे हल जरूर देना। अगर सही है तो आप शुक्रवार को एक गाने को मांग सकते हैं। आंख है, एक आंख है तो भी अंधा है, क्या है? यहां से हमारा कोलीखा जो है जोनी नंबर वन प्रोग्राम को लेगा। उसके बाद हमारा रहीम मफरो रहीम बख्श रहेगा और शाम का हेरहाल होगा न्यूज और हर रिखलाम। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, जहां तक ये आवाज पहुंचाए सभी को हमारा राम राम नमस्कार अदाए बरजो। और फिर मिलेंगे शुक्रवार के। सवाल मत भूल जाना, मेरे पास एक आंख है तो भी मैं अंधा हूं, क्या है? यहां से हम न्यूज रखते हैं और रिक्लाम। उसके बाद हमारा माइस्ट्रो जोनी नंबर वन,
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïense droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी राम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। दोस्तों अभी आप लोग सुबह से लेकर अभी करीब 12 बजे तक और एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना है, वो है हमारा कोलेखा साथी दीरबार कोलेखा, वो है अनिल सरजू और उसकी बीबी साहिबा, और वो है राबिया भी साधिया है। अभी 2 बजे 1 बजे बीबी साहिबा रहीम बस का प्रोग्राम आप लोग जरूर सुनते रहना, यहाँ से हम 1 बजे तक देश विदेश के समाचार को सुनाएंगे। शाम को 6 बजे इस प्रोग्राम को हम हर हाल करेंगे, याद रखना।

और दोस्तों हम तुरंत बढ़ जाते हैं अपना समाचार को लेकर। और समाचार क्या क्या होगा दोस्तों, आप लोग को तो पता है, जॉनी पूरा दुनिया को शेयर कराएंगे और करा कर वापस हम आ जाएंगे। अपना सूरीनाम और नीदरलैंड का भी कुछ खबर आप लोग को हम जरूर आज बताएंगे दोस्तों। 15 बरिस के 15 यारख लड़का भैया जेके अब्बे बाप माई स्कूल पठावे है, सभ्यता पठा बतावे है, सिखावे कि दुनिया क्या है। और 15 बरिस के लड़का सूरीनाम देश में भैया, और गैला एगो क्लीनिंग साख जेके नाम बा कैली फैशन लतूर वेख में भाई, और गैला हुआ सले पर भैया, सले पर चोरी करे और कपड़ा चोरी करो, ये लड़का के भविष्य का होगा भाई। 15 यारख के अनकिंत मुतिक्षक आंखलग और उकर भविष्य का होई रात के ई गैल है भैया। ऊपर से क्वालिफी जेर दे दिवस्टाल करी से भैया, ना सोचे दुकान में गए और चीच ले के जे भीम चल गए, ना भैया प्रोफेशनल दिवस्टाल करी से और गैल है कपड़ा और स्लेपर चोरी करे भाई। हाँ और बोले है ऐखनार जो रहसा के सी, हाँ बोले सनिचर के 1 तारीख ऑगस्टस के 10 बजे बोले हम अपन दुकान मोई से बंद कर ली है। सोमवार के सवेरे बोले व्यर्थ है दौर अनुभवा कर फान फास्ट फूड रेस्टोरेंट खबेल मैंने मई दे दी लिंग दैट एर वॉज इन ब्रोकन। वहाँ पे एगो वक्त रहा फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सवेरे सवेरे के बेल कही बोल तो दुकान तुरान है और अंदर नेमर भैया दाद सही देर फन विंकल ओपन स्टोन और बोले है फरमूद दाद दाद ओफर द ओम हेनिंग से इन क्लोमन एंड फॉर फॉल्कन्स फिया द सही देर द विंकल इज बिनन खद्रोंगन। जो कंट्रोलर भैले भैया तो बोले टी शर्ट गई ले और मेरक अंडर आर्मोर सेना के नॉर्थ फेस एंड बेसिक रकम रकम कॉर्ट ब्रुक सब चोरी हुई गए सिपाही गए और फॉर स्किल एंड खुदरे पकड़ान है भैया ऑन द सुकरी से बोले हैगा तेज से पुलिस और वेयर द फॉर स्किल एंड खुदरे इन बसलाख रोमन एखनार हरकेंद्र देश लातर अस एक दोन फन जैन जाग भैया। और 15 बरिस के एक येरेमी एम पकड़ी से ओके और गैल हैगा बोले ई लौंडा एगो लौंडा रहा करिया करिया ई बाइक पे लतूर वेख में रही तुन है दूर मन वेट आंखस प्रूक मैंने फरसूक ओम लिफ्ट फॉल्कस हेम हाथ दे समान अखरोत जिम्बोतास एन स्वार्थ प्लास्टिक सक में क्लीडिंग स्टुकन बै सेख। बोले द verdachte verklaarde verder dat zij samen op de e-bike vertrokken, maar bij het zien van de politie de tassen op de grond gooiden en wegrenden. Karia Nike rappen drabes ke lunda ke 3 go slipper en van alles ke pakalle se hamare janta. To aaj hamara Suriname ke bhavishya dekh le bhaiya, 15 year ke jonge aur shuru kaise abhaiye se dukaan toore ke चोरी करे के, तो ये अपन तुकोम्स में भैया इसी कर एगो बहुत बड़का का बोलेगा दिफ रहेगा अने का बोलेगा माफिया रहे भैया वहाँ जो छोटे पसे ये सब चीज करे लगिए तब बड़का हो तो के औरो एरफारिंग हो जाएगा। तरी रखेरिंग के ओर हम जाए भैया, सीमोन और गैगरी रुसलान के रखेरिंग की ओर हम जाई है नानी, तो बातचीत ई हो रहा है भैया। बड़ी गर्मी गर्म है सूरीनाम देश में और अभी आप बताएंगे, हम बताएंगे आपको कि सेड्रिक सिम्पसन सैमसन का बोली से जनता बहुत नाराज है प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन के। बोले 1 बरिस हुई गई है, बोले अब देशवा में इक्को फर बेहतरिंग न आयले यस ओही के आदमी लोन कपड़ी लोन अब कलाख करे है कि बोले और खराब हो गए भैया संतोखी के रखेरिंग से बोले और ज़्यादा खराब हो गए हैं। तो यहाँ जेनिफर सिमोन जो हम लोग के
प्रेसिडेंट है सूरीनाम के, और बोले हैगा बोले है ओकर कैबिनेट जो है मिनिस्टर इन हर कैबिनेट बोले वो मांगेगा अरे शिफलिंग भैया मांगे अरमियन के निकारे। तो एक बरिश हुई गए अब तो जाए निकारे सूरीनाम के गो कानून है भैया जे एक बरिश तो मिनिस्टर बांटे तब तू जिन चुके निकार दी तो तू जिंदगी भर पैसा पइए बहुत उसके रखेरे में भैया 50-60 गो एक बरिश के बाद में निकारत रहा उस सबके जिंदगी भर पैसा मिलेगा उ एगो स्मेरख अन हेल फिश ऐसे बोल रहे भैया अन पोलिटिक हैगा कि एक बरिश चुके हम ले ला तो अब ओकर बाद में फिर एक मेला धरबे तो फिर एक मेला का धरबे जो ने सबके जिंदगी भर तुसी का फौस पइए खरातस में और जिंदगी भर पैया पैसा पइए तो एक बारे में संतोखी ब्रंसवाई के रखेरे मात्रा ई वेतवा निकारे मालूम न वेतवा निकार पाए रहा कि ना निकार पाए रहा। और यहाँ बतावे है का मांगे है रे शिफल करे वेलफेयर से जाते मिनिस्टर से इनवार एंड मेयर सौमूतन खबीरन स्टार्ट सोफर सुरीनाम फॉर द टेजेस रखेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस मांदा आन कि ओकर रखेरे इस ओवरनाम फॉर यार इस कब्लीकन दैट है हास अले मिनिस्टर हिल फील कपोट वास एंड दिस खरीपा रेस मुस वर्दन। लेकिन यह बताई गई दोस्तों बोले ये हैव ऑल्टन मेंशन एन एक्स्ट्रा स्टेप ये एल्बो फॉर ऑफसेटन इस बार सिमोंस बतावे है मना बतावे है का जो रिशफल करिए मिनिस्टर वर के निकरी तो पैसों आ पाई कि ना पाई ओकर बारे में ना लिखी से ही भैया स्टार्स ओ बना दे कर द रिशफल ऑन द इन कन इवन अंडर द कांस ही फ्रॉम द मिनिस्टर दैट वेर बेटर टू डू मार द अंडर कन कोर्स दैट हैड लंच ओ फील हेल फ्रॉम दैट द से बेटर फिर ऑन दैट वर नो द मिनिस्टर ऑन द steunen, bolle volgens Simon, zorg en gebrek van decentralisatie in het land. Komende jaar is het jaar waar ik graag wat meer ga werken aan de herstructuring van de overheidssystemen. We willen werken naar een raamwet. We willen werken, toekatjahin, ik ben eens met kam, dek hou ik in mevrouw Simon. Oortjahin, Tjebate, president moet werken. Nu is de vraag, John Adamien Keres of welke de minister, gaan ze wel de geld krijgen? Salaris de hele leven? Of niet, want als die mensen, het moet zo zijn, als je je werk niet doet, moet je ontslag krijgen en dan moet je ook geen cent krijgen. Ga maar solliciteren voor een ander werk. Zo is de leven er. Het moet niet anders zijn. Wij zijn in Suriname niet zo ontwikkeld. Artemange en de Miloke ego luxe leven dat we op deze manier 1 jaar minister blijven en daarna ontslag geven of een reshuffling en dan word je de hele leven namelijk verzorgd door de belastinggeld van onze bevolking. तो ये बात है हमारे सूरीनाम की जनता। अब देखो यहां पे बतावे है रखेरिंग बोले सिद्ध ए रे पराची फासे बोले अबे हमने ठोंक ठाक करीला रखेरिंग वहां में एक मरीज हुई गएगा रखेरिंग जिमोन के और रिसलांद के एनपीएस के और बोले हम लोग अबे रे परेर करीला भैया तो के चाहे काम करे तो के चाहे रे परेर करे के प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन बोले हैगा बोले हम लोग के खाते को बहुत दाखिंग हैगा अरे जे तू ले ले देसो हमें तो तू जानत रही कौन चीज तू पइए तो बोले 3 तारीख अगस्त के बोली से और बोली से प्रेसिडेंट से पलेस में बोली से स्टार्स बोली से गा बोले एक बरिस बोले स्केच से द प्रायोरिटी फॉर द कमिंग पीरियड सिमोन वो फिंड द रेगिंग सिक मोमेंटल इन रिपरासी फासे बोले हैगा अब ओके हम लोग स्पाना आना लेके रख रेंगे वहां के बनाईला भैया बोले टूटल फूटल ला तो ये कौन मोदो है भाई। तो ये बात है हमारी जनता सूरीनाम की और हॉलैंड की जनता जो हमारा प्रोग्राम को और सुन ले भैया हम जाए तेरी दिल्ली के ओर इंडिया की ओर। अब इंडिया में भैया तू जाने हैं वहाँ पे ऑन्टविकलिंग बहुत जबर है भैया जब से नरेंद्र मोदी आयल है और योगी बाबा आयल है देश के बढ़ंती बहुत ज्यादा है। अब बोले दिल्ली में से स्टीफ इन ऑफ इलेक्ट्रिक फुर्तेकन इन स्ट्राइट टेकन लुक फॉर फेलिंग जो इतना धुआं हुआ है बोले वो धुआं खातिन बोले सब बंद करी और ज्यादा इलेक्ट्रिक सब कुछ हुआ होगा बोले इन द्रिक विंकल खबे जहां दिल्ली में बा होस्ट फन इंडिया और बोले हैगा वहां पर बोले हैगा
vrachtwagens en auto's druk bezig met opladen bij de weinige beschikbare laadstation. Dit beeld symboleert een van de grootste uitdagingen en beloftes van de Delhi's ambitieuze plan om een straatbeeld gratis te vergoeden en beruchte luchtvervuiling aan te pakken. Ik tarik jullie introduceerde Delhi een nieuw beleid dat is gericht in 2027. Bole het jada bole elektrisch gari huan pare chaliga. Aur yahan pe bataye gaye bhaiya bole flexible en toegankelijk last station huan rahega. Expert benadruk ki Delhi elektriciteitsnet moet uitgraden en meer moet inzetten op hernieuwbare energie om aan de stijgende vraag te voldoen, mensen. To ye baat hai hamare pyare pyare janta. To aapko hum apna program ko aur aage ko sunayenge bhaiya. Netherlands mein बहुत जबर झूरा है जितना आदमी के तैन उन है सब के ब्रीफी गए ले हमें तक के अब पानी तो के ना चाहे तरकारी के सींचे के ओमदाद झूरा बहुत ढेर होई गए है दसवा में हॉलैंड के बांची थे जितना आदमी के तैन हैगा जने क्रियासी तैन है जो तरकारी अरकारी बेचे है उ सब आदमी के अब पानी ना चाहे सींचे के तब सोचो ये पानी ना है तरकारी प्यासे मर जाए भैया ये हु बात है हमारे जनता तो ये बात है हमारे दोस्तों अब देखो जाए अब और क्या हुआ है बोले वी एस एर बंग फॉर मारवेन बोले मारवेन में के डड़ा यहाँ लिखल भैया मारवेन रीबा के मानचित हुए है जो जिंदगी भर से एवन लंग फ्रेंस रह गया फ्रांस खुयाना से और मारवेन तो जाने अल्बिना से बोले हजारन लोग हजारन को इससे लीफंस लीफंस अदर बोले जिए है वहाँ पे मछली से जिए भैया हंडल से जिए है काम से जिए है बोले रिफीर फॉर मेन खमीस कापन दी आन वेदर सैदर्स आल जेनरेशन लांग मेट एलकार लीफन toch leek de Marwijnen de opgelopen periode vooral een rivier van onzekerheid bolle te zijn geworden. Op bolle tijdens de Kroetu Stoelmans eiland mee abobke voorzitter Ronnie Brunswijk bolle hega bolle hego parka protocol hega stemkrikke bare mee bolle democratisch mag ieder partij een eigen afweken maken. Op bolle heker bare mee Brissel se jarenlange se sarnaam of Frankrijk onderhandel krijgen beter afspraak krijgen gezamenlijk grens ke 2021 mee ego protocol bijla onderteken bijla toenmalige regering Brunswijk vicepresident se op een vervolgens consultatie met de grensgemeenschappen op een hega behandeling ke bare mee hamare pyare pyare meetha meetha janta. तो जैसे जैसे समाचार रहेगा आपको हम बताते रहे. अब देखो भैया एगो औरत भाई बड़ी चकल्लस करी से हाँ औरत भैया सिपाही के ओतो लेके भागे सरनाम के भैया सरनाम के बात है और ये बात हुए हैगा भैया लेसुन के रास्ता ओकर नाम बा कनोफ्लो वेख के बात है हमारे जनता ते एगो रास्ता के नाम है कनोफ्लो बाकी कनोफ्लो तो सिरिनाम में ना बवा है लेकिन रास्ता के नाम है नानी ते एक औरत भैया सवेरे सवेरे सिपाही के ओतो चोराले भैया बैठ कमाग बोले ओतोवा जो रहा अब ओके सब खोजे है तो जाए के पाई से कनोफ्लो वेख में भाए कोनो फ्लो वेक में पाई से बकी बस कारक तो हुआ ना रहा सिपाही बोले हेगा बोले फुरते फिर द्री कर एन दे उकर नाम रहा जो लेडिंग फान अखेंट औरत है बतावे फॉल्क्स द पुलिसी रिपोर्ट क्रीक द बमांगने पुलिसी फुरते अंडर लेडिंग फान एगो सिपाही के नाम बा अवतार द opdracht assistentes te verlenen nadat het dienstvoertuig van de DNG was weggenomen.
ओ तो वो ले के भाग गया। बहुत सिपाही एक एक खोजी से भैया लेसुन वेख में जाई के पाई से सिपाही सिर्फ हियर द इंटेंसी इन हर गबीत रोंद मखेंटा कनाल वेख एन द ओमलीगेंड स्वेगन सेई वेगन अनफंकलिक सोंदर रिजल्टेट ओ बताई गई हेगा। Ter plaatse werd ook de vrouw aangetroffen die het voertuig zou hebben meegenomen. Zij vertoonde volgens de politie verward gedrag, waarna om extra ondersteuning werd gevraagd. De beloof verward raar, beloof een mooie naam, mooie kamatra, bakisipahik auto leek toe peelbangel he. Bolle omdat de contactsleutel van het dienstvoertuig niet meer aanwezig was, werd besloten de autosleepwagen weg te voeren. Toen ik hietje lege, maar kan ze lege? Je hoort ja ook er baar mee. यहां पर ना बताई से हमारे जनता किसी पाई के गाड़ी लेके सेवन चल गए हैं, तो जब मालूम पड़ेगा तो आपको हम जरूर जरूर जरूर जरूर बताएंगे। एक भाई और बहन भैया सबको रक्षाबंधन माने के दोनों के हाथ में हट कड़ी लगल है। हाँ भैया के हाथ में दीदिया बांधे हैं रक्षाबंधन। यहाँ भैया और बहनी दोनों के हाथ में सिपाही बानी से हट कड़ी लगाई से भैया हंद बुए लगाई से कारण कि बुई तारीख के भैया ये दोनों जात्रा के फॉल पे ना सांदर ये पे के सभन पकड़ ले से दरक्ष भैया दरक्ष टीम इसे के पकड़े रहा पकड़ ले से भैया ये दोनों बोले हैं स्टोंट नेट naar het buiten te vertrekken. Dus sap kuj hoi geraha. Ab ohi tu jane last pasportwa check karke ab tu jaiye bahire chaliye plane me. Ab bole hega ekar bare me sipahi farmut karat raha ki dunu verdachten cocaine bolletjes hadden in gesleg na lollipop bolletjes duru li le raha skoutu farmut kal raha aur ye dunu ke नरकोटिका ब्रिगेड पकड़ के ली गए है अंडरसुक करी से देखो 52-jarige vermoedelijk cocaïne op een natuurlijke wijze zijn uitgescheiden terwijl de zus 46 bolletjes heeft uitgescheiden 46 bolletjes op hij wat 52 vermoedelijk kokertjes bolletjes raam. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de man totaal 116 bolletjes zou hebben ingeslikt en de vrouw 91 bijna. De otra ilile raha bolletjes na Berlin bolletjes kokake bolletjes. Hey mausi, tu samaj gai le hum kaha mangila कहां मांगी ले जाए हमारी जनता। तो हम जाए नीदरलैंड में भैया स्वोल की ओर। तो स्वोल के जनता भैया एगो हो को बरूप सबन तेकन कर ले रहा बरूप कर ले रहा स्वोल नारायण बकी सखवा सबन हराई गए भैया ऊपर एगो इंस्प्राक कि एगो नवा आजद से जिस असील सुकर के खबाव हुआ आएगा तो हुआ के बोनर जो ने स्टाच हाखन स्वाल के होकर बरूप गैला एगो साख में सबन हार के खमें तब स्टीर में ओवर इन स्प्राक रोंद कौंस वा न्यू असील सुकर सेंट्रम इन हुन वेई गमेंटे ही फॉल गजेट गरेक्ट ऑफ वेलस्वार ऑफ सबके पुंते onhandig maar niet onrechtmatig geopereerd. Februari में एक स्टिकिंग है लीवार्ड स्टास हाखन बोले को कोर खदिंग कर ले रहे कर बारे में और बोले हैगा ऑब्स्ट्राफ ऑफ ऑन ड्वंग्स ओम 10,000 यूरो पर दाग चाहेगा इन होकर बरूप ऐसे द स्टिकिंग दा द गमेंटे alle voorbereidingen voor de realisatie van het aanzet per direct zou staken. Bolletje Hantra ban kareke op staven van de dwangsom van 30 jaar per dag. En dat de gemeente een participatieproject traject met de omwonenden zou starten. Zwolle vindt vang sinds 2023 ongeveer 10 zo vluchtelingen op aan de Meeuwenland in de wijk Kamper Poortraan. Locatie bolle 1 februari ke biete hue saal mein stem de gemeente in met de komst van de nieuwe AZC in Staatshagen. Daar moet volgende jaar ruimte komen voor de maximaal 400 asiel zoekers ke hua sabandhariga.
तो ये बात है हमारे जनता, हम बोली कुछ आशील शुक्र के बारे में बतिया भैया जबरदस्त आगे लगल है इना दूसर देश में, हम लोग के देश में भैया नीदरलैंड में भइल है, नॉर्थ लिम्बर्ग तो ऑस्ट्रिम में भइल हैगा, नतीर ब्रांत है जहां पे भैया बहुत जबर जंगल में आग लग गए है। हाँ नतीर ब्रांत है और बताएंगे लुख फोक्त है कान ब्रांत फेर तो अपलाइन है ब्रिसन ड्यूट नोक सीकर तो वुंसदाग मेंसे यहां लिखले 9 बजे द ब्रांत ब्रेड सिख फेर uit richting de oosten और ये बात है नॉर्थ लिम्बर्ग तो ऑस्ट्रम में बताए गए हैगा 100 हेक्टार भैया जर गए है और बोले दैट कम नियर ऑफ 1 vierkante किलोमीटर 100 हेक्टार 1 vierkante किलोमीटर के बातचीत हुए है। बुर्गमेस्टर जो नेगा uit Haag जो ने गमेंटे Van Rijck बोले हैगा सब जोर तोर से बुतावे है, gelukkig is er nog steeds geen materiële schade in de vorm van objecten op persoonlijk leed, zegt hij. Brandelijk zelf de ruiken in Friesland met zijn makke hoe ze keer John Agia hij Friesland met zelf admike ultra doelig hawa geil hij doen we op de brand brak maandag aan het begin middag. Er is toen een Nederlandse alert verstuurd vanwege de rook. Opbollega vanuit onder de meer Friesland, over IJssel, Gelderland meer. Melding bij de brandlucht gebaren mee. Toe, wat aap, toe gebaren we ja, 100 hectare. 100 hectare. Agi se, jani ki hem lukke, natuur brand bijl hai. Aar hoe hai Limburg mee. वेनेजुएला के भैया ने सूरीनाम पैकेट पठाई से, हाँ ह्यूमिटेर हिल वेनेजुएला के पठाई से और वो है हम लोग के सूरीनाम पठाई से और फोटो बने एक से एक भैया पाकी में सब सरनाम के फोटो बनावल है और प्लेन लगे थरल है कि इतना पैकेट हम लोग पठाईला वेनेजुएला में भैया हेल्प खुदरन और बोले द हेल्प अक्सी मांग देर सूरीनाम से अंडरस्टैंडिंग एंड बफरिंग द लैंड बोले हैगा फरवुस्तंदा आरबी जे हुआ भइल है और बोले हजार को फुल फुटसर पैकेट पठाई से और एक पैकेट 10 किलो और बोले हैगा ओमा है 52 टन रईस हैगा दुई कंटेनर भरल है फर्स्केप दान फॉलो फिया से फ्रा अनफिलंड सेंडिंग फॉर 9 टन तो एकर बारे में भैया सोशल मीडिया पे आदमी लोन बड़ी बड़ी नाराजगी दिखाई से कि हम लोग के देश के अपरे हेल्प काम है और तू वेनेजुएला के पठावे है बाकी हमारे जनता सूरीनाम के वो मु तो ओक अकेर चल ले रे ओम आंध्र लंद ओक तो स्टेन ना खाली अपरे के स्टेन, हाँ जब देखो तो फैलाए रही हो तो हमें ई दे तो हमें उ दे तो ई कर तो उ कर, जब दूसर देश में तो ब्यूरलैंड में प्रॉब्लम है ना मुझे ओ कर हेल्प आज द मोकलखाइट इज नेचुरली हम लोग के जनता के हुआ पर पैकेट के काम बा मैं मुझे ओक अंदर में से देंक हु द डिंग सेन व अब सूरीनाम में भी पैकेट बहुत ही स्पॉस हुए है तो हम लोग कभी न जाए लो कर बारे में बोले कि पैकेट तो ना पठाओ। दोस्तों एगो 52 यार के आदमी भैया सिपाही के मारी से बदराई करी से भैया में द दूध और चीजो भाई एगो आरे दिंग लगे भाई ले हमारे जनता। एगो 52 यार के सिपाही पुलिस फन सेंट्रम शहर के बांचित है परमारी बो के बांचित है और बोले हैगा तुरतोना लंत में बोले इंसिडेंट हुआ भइल है जहां पे यू को हामा इन द ब्यूट थे वार पुलिसी अखंड बोले बेशक रहा अफहंदल करके को अरेस्टिंग के बारे में उतरे में बोले फलूफ के बमुई दे फरदाख्त एक बमुई करी से बोले हर लहालक में द वर्कसम ही दे फन पुलिसी अब बोले ओकर बेटवा फॉर और साक द फन अरेस्टिंग सेन खवीस बेटा हुआ जो रहा वही फॉर और साक कर ले रहा अब बपुआ गैला बमुई करे सिपहियन के कितलोपन काम ना मुई करे है ondanks meerder bevelen om afstand te nemen van de politie haar werk te laten doen, bleef de man die agressief intimiderende opstellen door zijn gedrag voelde benadeeld aan de aanrijding zich bedreigd en werd de afhandeling van een verkeersongeval ernstig gestoord mensen. Aur isi pahi hua hai aur je ke aanrijding bhaila oke jai ke sur tu bedreig karisega sipahi lon bhaiya aur upar se adamiya sipahiyan ke
bullen hem met de dood hebben bedreigd en volgens in het gezicht hebben geslagen. Schoten ge marboka die ze. Sipahi lokke bhaiya chot lagge he. Aur bole tab ikke pakad ke aur le aaye ke ban kari se. Uitoefenen van de politietaak. De man werd door de politie aangehouden, overgebracht. De up to jou, sipahi ke ban kari toke pakad ke. Kaida toke na bhaiya aray dinkere laat de politie maar hun werk doen. Ondanks Surinaamse politie een hele slechte naam is, zijn er heel veel politieagenten die goed zijn job doen mensen. En laat die mensen hun werk ook goed doen. Zo gaat het. En het kan niet anders. Abhaya deko tamasa. Ego dukaan in Suriname des me bhaiya jahan pe murgi bika hai na skip okar naam ba aur ee hai sahar paramari bo ke banchit hai choran ghusal hai dukaan me mausi aur na gala murgi ke tangdi chori kare ha ee sab gai la kalai se nikare aur kalai se nikar ke bhaiya ab ohi jaat raha bas utre me sipahi pahunchare dada मैया दैया लेके कलेज पलेज बिक के चोर भागल भैया अब कलेज वाला निकाल ले रहा दुकानिया में से ओम बोले लेके भगल है मसीपाही भैया दौराई के सब के पकड़ ले से त अभी चोरवन हाथों से गैल लतवों से गैल मतलब हाथ से कलेज छूट गए और लात अब सिपाही के खइए तो ये बात है हमारा सूरीनाम के हमारे जनता दोनों के सिपाही पकड़ के और ले गए है बोले अब चल तू गाना गाओ उमा नांगा मांग गयो और उमा नांगा मांग ना गयो तो मुर्गी के गोश ना पियो खाई के जहल के बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे जनता तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं सुनाते हैं एक गीत आप लोग को हम सुना देते हैं उसके बाद हम तुरंत आ जाएंगे आपके पास हमारे सूरीनाम की हॉलैंड के और जनता आपको कौन गीत हम सुनाई बहुत खूबसूरत है ये गीत

और मेरे दोस्तों, और करो तुम क्या क्या, लेकिन हम आप लोग को अपना प्रोग्राम को और आगे को सुनाएंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे जनता, हम जाते हैं अपना और समाचार को। और यहाँ बताए गए भैया, सूरीनाम देश में बड़ा गर्मी भैया, 40 खराद हो गई है गर्मी। हेत तो फिर तक खराद इन सूरीनाम, स्टीफ़ का ऑन वेयर्स बैयन ऑफ कॉम्स इन सूरीनाम, जबर पानी बरसी लेकिन बहुत गर्मी है। तो जे सूरीनाम को जाना है भैया, आप लोग को मालूम चाहिए कि क्या बात है। ये 3 तारीख ऑगस्टिस के बातचीत है, बोले है का माकर में द्रकन वारंवेर का फॉलक दो रस्तेर के तू नहीं में कांस ऑफ रीकन एंड ऑन वेयर बैयन बेनलांत में भैया जबर पानी बरसी लेकिन 40 खराद गर्म है। यहाँ बतावे सवेरे सवेरे खरोतन दिल झूर रही और बोले संझा कैसे बोले सेफ ने डर तक तो फिर तक खराद सूरीनाम में टेम्परेचर हैगा और बोले हैगा मिनिमम टेम्परेचर 20 तक रहेगा। तो रात के साथ रात हुई भैया और बताए गए हैगा फॉल्क बीच फरवक्टिंग गल फ्राइवेल डिस्ट्रिक्ट काउंस ऑफ द ऑनवेज बैन इन परमाणी बेवानी का लिखन टेम्परेचर ओवरडाग टूशन 24-32 ग्राड कोरोना इन केरिसिपालविनी क्विक ऑपरेट 33 ग्राड में से। तो आप लोग कम ना डरवाईला बताईला और गर्मिया के सब कोई डायरेक्ट बोली बाप रे बाप, हमें वो हफ्ता उड़े के कैसे रहबे हम बोले कैसे रहबे, हमारे को लिखा कल गया है नाम नहीं लेंगे कौन, तो उसको तो पता चल गया होगा कि कैसे है चीजवा। तो ये बात है हमारे जनता, गर्म जो है गर्म जो कितने लोग को अच्छा लगे भैया, कितने लोग को तो बोले हमारा मान के गर्मिया ना में ठंडवा सहाइया है, बोले गर्मुआ ना सहा है हमार बात वही भैया। कारण कि दोस्तों ठंडा जो है तो ठंडा है, तो उससे आप अपने कपड़ा जो है पहर कर अपना देही को गर्म कर सकते हैं। जैसे ठंडा यहाँ है, जब बहुत विंटर है भैया तो यानी कि मोटा यास पहरो, भीतर में टी शर्ट पहरो, फिर तुरई पहरो, और जब और गर्मी है तो टी शर्ट ना पहरो, यास ना पहरो, तो फिर ऐसे। लेकिन जब गर्म है भैया तो लास्ट जो ना बिना कपड़ा के चलिए तब वो गर्म हुआ लगेगा 40 खरदवा। इसमें से हम जाई है एक 13 बरिस लड़की की ओर। 13 बरिस के एक लड़की सूरीनाम के भैया लंदन ओके दुई दुई को ले गए है नानी, ना गए लूस एंड मामा पढ़ावे नानी, ले गए ओके पेंशन में भैया। सूरीनाम में जाने पर्दा वाला घरवा बड़ा ढेर है, तो खोर दैनवा घी दिया भीतर में, वो तो लगल नाटक खेला है भीतर कमरा में, धना धन खेला है। तो सूरीनाम में ये पेंशनवन चारों बगल है भैया और लिखल है, बोले अपार्टमेंट दान जाइयो, सोची हम गली फकांसी से जाइयो अपार्टमेंट तो हिर कले जहाँ कहाँ देखियो खरदैन है हुआ ना जाइयो। तो ये 13 बरिस के लड़की के शुक्रवार से ऊपर से स्कूल से एक 17 और 20 बरिस के लंदन एक ले के गए है मुंगो के पेंशन में भैया, वो है उस सूरीनाम में। तो मुंगो में ले गए भैया फरनोमन वार्ड कि ओकर माई गैल सिपाही में नालिश करी से कि ओकर बिटिया घरे ना आइल है, और बोले तेज से ऑन द शू ब्लैक दैट इन मैच लातर सेल्फ द स्क्वाम, बोले ओकर माई जो ओके कॉन्फ्रेंस तेर कर कि तू कहाँ रह ले। तो लड़कियाँ बोले हम दुई गो लंदन के संगे गरी पेंशन में है स्वैरक बनावे नानी। तब बोले द मुदर दिन आन खिफ्त और वो हीरो जाए के दोनों लंदन के सिपाही पकड़ी से और दोनों के पकड़ के बोले है मेंदर यार रख रहा है एगो, अब ही दोनों के पकड़ के ले के अब बंद करी से। तो ये बात है भैया 13 बरिस के लड़की के और स्कूल के लंदन ने ले गए है और पेंशन में भैया मेंडर यारख ना है स्वैरक बनावे स्कूल के भैया दूसर है स्वैरक गैला बनावे। तो ये बात है हमारे यारो हमारे जनता। भैया हम यहां देखिला सांद्रई के रईस खर्च जो बा बेना 2 किलो कोकेन लेके हबड़ा होत रहा। हाँ
2 kilo. Ik heb 34 jaar en wie zijn die tjerke baat he. 2 kilo coca leke jatra bhaiya buitenlaan. Aur ek bhi drugs team pakal le re ego ka pakal le bhaiya 10 go habda ho ja hai to jo ne pakda wohi likha hai ab jo na pakda thoro likha hai aur idhar le raha apar rice coffer mein bhai rice coffer mein dhal le raha nehti hondat 38 gram dhal le 2 kilo aur bole ek narkotika narkotika brigade lege aur pakad ke natürlich ban karega jab tu aisan cheez kariye to Suriname mein drugs वक्त जो आप फिर शुरू हुई है भाई बोले चश्वाला पे आप लोग को हम पढ़ के बताएं न और यहाँ पे और कुछ बताए गए हैं कि अब कॉफर बाख में भी लेके और जा है हबड़ा हुए है हमारी जनता ये वांछित है। तो दोस्तों चोरी भैले भैया हाँ खवापंत रूफर्स भैया एगो माकन फोर्थ रैप्टर एगो ओतो के नाम बसरी नाम में और है फोर्थ रैप्टर ओकर नाम बा हाँ सिरादन एंड फेफ तक 1000 एसआरडी मारिस ओतो वो चोराई से और 50,000 कहाँ है हमारा है? हरीश मनोरथ मिनिस्टर फॉर जस्टिस पुलिस सिख बोले देसवा रिश्ता कोई गे चोरी ओरी ना होवे बोले बहुत कमती बले दे रे भैया दिन दोपहर हुआ बालकोन में कोई झलवा झोले और ओकर जे नका बोले हेगा सोना के केती फेती ले के भग या अभी यहाँ देखो एगो करिया करिया खरीस फोर्थ रैप्टर रहा और ओकर हाउस कैटिंग 3 अंगूठी और दुगो कॉन्टैक्ट ले टेलीफोन अंदर फुरते हैं दुगो मोबाइल और 50,000 एसआर दे लेके और लुटेरा लेके पेल भागल भैया और बोलेगा बना देल दे रीडन वे रिक्टिंग voertuig is weggereden en is vooralsnog nog onbekend. Op het eigen nieuwe grondje sipahi ik er waren mee. Khoj bin kare hai jor tor se. Ab dekho mile hai ki na. Eerste hulp ke baad bhaiya blijf 24 uur open tijdens uitbreiding en renovatie. Te saban aanzet jo ne academie ziekenhuis. Bole hega saban renoveer karega. Maar bole chahe renoveer karega. Ziekenhuis wa wel 24 uur bole hega bereik bar rahega to hum boli aap log ko hum batai de ki Suriname ki janta na ghabdiyo kuch rahi to aap log ne kar bare mein ek ko bunna chinta kare kaam ba aise tulo jai sake chahe renovasi hue hai lekin aap ko wahan pe bahandle yani ki milega to ye baat hai dosto hamare yaro प्यारे प्यारे जनता स्टार न्यूज़ बतावे भैया बोले कैनेडी वेक में आतवार के भैया जबरदस्त कंट्रोल भइल है और बोले उतरे में एगो ब्रोफिसर जाए के भड़ भड़ भड़ भड़ कौतुक ऊपर चढ़ा दे इसे भाई नहीं नुकर रेमोना कमात्रा कि अब सेतलक चढ़ा इसे महिया लिखल अब सेतलक सिपाही ऊपर चढ़ा दे इसे सिपहिया के स्टॉप टेकन दे इसे ई ब्रोफिसर ना रुकल जाए के सिपहिये के पेल दे इसे नानी फरकेर सांतावे एम पार्केट वक्त बोले हैगा सिपहिया बोले आखिर ऑफ दैट मोमेंट रहा उसने लेस कंट्रोल करत रहा ब्रोफिस के और बोले वेकर कलेरा स्टॉप करके और जाए के ऊपर ऊपर चढ़ा दे से स्नेल है इस मेट अपराध अंदर तेज कंट्रोल वेर खबरे राखते ओक बेस्कादिक मेंसे है इस ओवर खबरा ना दे पुलिस ब्यूरो अब देखो ओकर संगे का होवे का ना होवे जैसे पाही तो के रुकाई भैया तो के चाहे रुक जाए के तो ये बात है हमारे जनता आओ देखो सब बोले हैं हमारा सिमोंस गैल है इंग्लैंड बोले गैल पैसा थोरो लेनी करे और एक बारे में गया दिन बोले रे बोले खोल कर थोरो गैला कर्जा लेवे वहां जब प्रेसिडेंट गोर निकारे देशो ते सब के धुक धुके कपते रहे कि कहीं जाए के हुख रहे ते में कर्जा ना लेवे है तो सिमोंस या बोले खीर लेनी ऑफ कोर्स लोटल बैंक ऑफ अमेरिका
तो इतना आदमी ना विश्वास करे अपन प्रेसिडेंट के जेनिफर सिमोंस मार के बोले ऑन कैन करे है कि वो लंदन गए ला बोले अनलीनिंग ही आपका स्लोटर बेरे बैंक ऑफ अमेरिका volgens staat zo waren de gesprekken uitsluitend bedoeld om een strategische partnerschap op te bouwen in de internationale financiële deskundigen naar Suriname te halen in aanloop naar de verwachte olieinkomsten. Bolle hem kardjana lili he, or aise aise baant he, hamare pyare pyare, janta nieuwe grond ke sipahi lo bhaiya, or bolle he, Melfis Pinaz ghar ghar ghume he, or janta se waha baatcheet karega ki tulon konchi mange he hiya पे जनता से मांगे कांटेक्ट करे इंस्पेक्टर लोड और हुआ जनता के तरह बोले बोले यहां पे हंग योंगर दुकान लगे बोले बहुत ढेर है हुआ दुकानिया लगे खड़ा होई के दारू पिए भैया दारू पिए है और अंडबन फिस फास भी करे जे हम लोग और जात जाएले दुकानिया में और बोले हैगा ओकर बारे में बोले तू लोग कुछ कर और चोरी चपाटी हमारे देश में इस प्लास पे दोस्तों का हम बोली बोली जो नहीं खाती बतिया हम नहीं खाती ना बतिया हम वही बतियाला जैसे तोरिया है ऐसे बतिया है ना हमार नानी ऐसे बतिया है और दूसरी बात ना है हमारे जनता तो ये सब बात है सूरीनाम देश के हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम के जनता एक गीत हम आप लोग को सुनाएंगे उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को धीरे धीरे खत्म करेंगे और वो गीत क्या है आप खुद ही सुनिए

बस दोस्तों इसी गीत से एक दो समाचार आपको हम सुनाएंगे, उसके बाद में अपना प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे। दसन कोर्टन न्यूज़मैन से दी ओली सी कम तो भी। अब देखो भैया, एगो मलाई है, ओकर नाम बा पावी रो रे जो सनाम से फॉलो कर से दीप स्काम और फोर स्मे रख बेनन स्टार। भैया बोले गंधा है देसवा पर हमारी बो गंधा है, हुए के पार्लियामेंटारी बोले पावी रे जो बोले जनता के चाहे हुआ पे बहुत शर्म के मारे में डूब मरे के हिंदुस्तानी में सब बोले ना डूब मरे के चाहेगा तो पावारे जो बोले भैया बोले सलाम के बेनलान बोले स्मे रखेगा। उसके बाद में साथ साथ हम चलते हैं हमारी जनता स्लेमी स्टाफ वेर एट आत्विन तक एक ब्लेफन प्रात तो में खराब और मी मुर्गी पोसे है एक बदराइ फे और बहुत निखाटी फिटेज बतिया रखे रिंग के बारे में ओम दर्द सुन ना मुझ चले साथ साथ भैया एगो इन सीफ तक यार के आदमी के लाइक मिलेगा अफू बाका वैख में भाई डाम पे मिलल है। साथ साथ हमारे जनता फ्रांकराइक के अम्बासाडर जो नहींगा सूरीनामक बोलेगा फ्रेंस अकॉर्ड के बारे में चाहे खुशप्रेक करे तुरंत जानो है सेड्रिक सिमोंस जो रहा और वो बोले रहा बोले वे वेले खेन हेन खेन फ्रावन आस प्रेसिडेंट में लेकर बारे में जितना एनडीपी के औरत रहा सूरीनाम में और बदल करेला डीएनए में सब निकल के डाम पे खड़ा हो गए बोले है बोले कैसे तू बोल सके को औरत कहना चाहे प्रेसिडेंट हुए के तो सिमोंस यानी कि सैमसन बोले सेड्रिक सैमसन बोले है बोले एक क्वार्टर के इंटरव्यू जो हम कली बोले पूरा सुन तो लो खाली एक मिनट हुआ वाला सुने बोले हम ना बोले कि औरत के नाम आखे करे के बोले औरत लोन हमारे के क्लाख करेगा कि एगो औरत प्रेसिडेंट आइले बाकी तब वो कुछ ना कर पावे है बोले ओकर बारे में बोलली बाटी कि औरत प्रेसिडेंट हैगा चाहे ये है मां वो आए के फ्रंट वोर ल खाई दे नाम ना देवे बोले ओकर बारे में बोलली है और एकर बारे में इंग्रिड बाउटर्स जो ने बाउटर्स औरत बोले हैगा बोले बोलेगा स्क्रू ले लेकर बोले खाली चिल्ला है सैमसन तो सैमसन इंग्रिड के बोले बाउटर्स के बोले है बोले पहले इंग्रिड बाउटर्स के चाहेगा जितना नापसंद औरत है उसे माफी मांगे के जोन ओकर आदमी जोन है और फुटल भाषा में बोले भातार जोन ओकर है बाउटर्स जोन मर गए है बोले ओकर बोले चाहे इंग्रिड के नापसंद के या औरत लोग के चाहेंगे फॉर ऑस्कुलिंग करे के बोले हम नकर फॉर ऑस्कुलिंग ला दे फ्रॉ फन बाउटर्स इज फॉर फॉर ऑस्कुलिंग अनबीर फॉर द नापसंद जेकर बाउटर्स आदमी लोग के माढ़ाड़ी से दोस्तों जबरदस्त आगे लगल है और ये हैगा वोनिंग ब्रान अन मोन सो की वेख में सूरीनाम फरलोर द अफकोलो पर फिर तक यार होंदे सेस हेक्टर जंगल दोस्तों। तो यहां तक था हमारा देश और विदेश के समाचार जो आप लोग हमारे जॉनी नंबर वन के जरिए सुनाए हैं। नीदरलैंड के आखिरी भैया एगो आदमी माउंटेन बाइक चलावत रहा और नीदरलैंड में एगो वॉल्फ देखी भैया और वॉल्फ के देही में एको बार ना रहा भाई है सीखते रहा आपल दोरन के बारे में है तो आप लोग को हम बता देते हैं। यहां से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करने का आए हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम है जॉनी नंबर वन। राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सत श्री अकाल।

एक समाचार आप लोग को हम सुनाएंगे और वो है हमारे साथी गंगा जी के, यानी दोनों राख के उसका एक इंटरव्यू है और वो इंटरव्यू होगा एक महान

एक विशेष सूचना सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। आस्तान दौंदरदाखस और ख्रिस्तस को करीबन 11 बजे एक आउई खत के बारे में हम बातचीत करेंगे श्रीमान राम राम भारत सिंह से। आपको शायद याद होगा जो लोग निकदी फेफन से इवन तक से पहले आए हैं उन्हें करीबन 25,000 से नवाजा गया है, लेकिन जो निकदी फेफन से इवन तक के बाद आए हैं उन लोगों के बारे में श्रीमान राम राम भारत सिंह आप सबको बताएंगे जो इस वक्त आओवीर से। तो भूलना मत अपने हिति प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से परिवार से कह देना कि दौंदरदाखस और ख्रिस्तस को करीबन 11 बजे आओवी खत के बारे में बातचीत किया जाएगा श्रीमान राम राम भारत सिंह के साथ, और उन लोगों के लिए जो नेक तीन फैफन सेफन तक के बाद आओवीर्स हुए हैं और होलंत आए हैं।

एक विशेष सूचना सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। आस्तान दौंदरदास ख्रिस्तस को करीबन 11 बजे एक आवी खत के बारे में हम बातचीत करेंगे श्रीमान राम राम भारत सिंह से। आपको शायद याद होगा जो लोग निकदी फैफ से इफ्तक से पहले आए हैं उन्हें करीबन 25,000 से नवाजा गया है, लेकिन जो निकदी फैफ से इफ्तक के बाद आए हैं उन लोगों के बारे में श्रीमान राम राम भारत सिंह आप सबको बताएंगे जो इस वक्त आओवीर से। तो भूलना मत अपने हीति प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से परिवार से कह देना कि दौंदरदास को करीबन 11 बजे आओवी खत के बारे में बातचीत किया जाएगा श्रीमान राम राम भारत सिंह के साथ, और उन लोगों के लिए जो नेक तीन फैफन से इफन तक के बाद आओवीर्स हुए हैं और होलंत आए हैं।

दिदो प्यार और लेलो प्यार, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुनने वालों के खिदमत में आदाबर्ष नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, अगस्त के 4 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाउन रेडियो के फूल टीम के तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश हो। जो लोग इस वक्त सफर पर जा रहे हैं, सफर मुबारक हो। जो लोग गैर मुल्क से यहाँ हॉलैंड में आए, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम सब आपके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या इंतजार कर सकते हैं? इश्तिहारे, कुछ मिले जुले नगमे, नई और पुराने, सब मिला जुला कर कोशिश करूंगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुद मैं, बीबी साहिबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हम प्रोग्राम को पेश करेंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। अभी आपने मुझसे पहले भाई अनिल के जरिए से प्रोग्राम को सुन रहे थे। चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सिलेक्शन आप सुनेंगे।

घोरा पेशौरी मेरा तांगा लाहौरी मेरा। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी से मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सेलेक्शन सुन रहे थे।

दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने साधना सरगम और मोहम्मद अजीज से गीत सुन रहे थे।

0: हसीन हसीन वादियों भी आपने अनवर से गीत सुन रहे थे, जिसका था मुझे इंतजार वो आ गया है। आप रेडियो फाहुन पे चुने हमारा पता है युवा रेंकर्स का आदर 385 तक पर। एक नजर बाहर की ओर डालूं तो मौसम का हालात मत पूछिए, इनसे हर एक वाकिफ है। इस वक्त धूप निकला है और तापमान यानी टेम्परेचर 100 तक खराद है।
1: इतनी मोहब्बत है कि अगर तुम चाहो भी तो मुझे नहीं भुला सकते।
2: नहीं किशन, मैंने तुम्हें भुला दिया, मैंने तुम्हें भुला दिया।

अगर दिल किसी से लगाया न होता तो जमाने ने हमको मिटाया भी न होता। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत सुन रहे थे। संगीतकार चित्र गुप्ता और इस गीत का लेखक है अनिल धवन। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तेरे बिना, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तेरे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना।

दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई कभी प्यार ना करे। अभी आपने पंकज उदास से गीत को सुन रहे थे रेडियो फागुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। वो जो जागते हैं तन्हा रातों में, वो जो जागते हैं तन्हा रातों में किसी के लिए, वही जानता है किसी को खो जाने का दर्द क्या होता है।

जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी हमने तोड़ दिया। अभी आपने लता मंगेशकर से गीत को सुना है, रेडियो फागुन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में। जब तक वो साथ है सब कुछ सही लगता है, जब तक वो साथ है सब कुछ सही लगता है, तेरे बिना तो ये दुनिया भी बेकरार लगती है।

मेरे दिल की है ये आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा, कब मिलेगा ये भी मुझे पता नहीं है। लोगों से इंतकाम मत लिया करो, लोगों से इंतकाम मत किया करो, खराब फल खुद ही दरख से गिर जाता है।

तुम रूठ के मत जाना, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ये तूने नहीं जाना। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले से गीत को सुन रहे थे।

0: इसमें देखा जाए तो 3 मिनट बाकी है 2 बजने में। यहाँ से आप इश्तिहारे सुनेंगे, इश्तिहारे के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322047। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken.

सुन मेरी साजिदा, देखो जी मुझको भूल ना जाना। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले से गीत को सुना रेडियो फावन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो 2:07 व्यतीत हो चुका है। आप फावन रेडियो पे चुने हैं।

तेरा साया जहां भी हो सजना, पलखे बिछा दूं सारी उम्र वहीं पर गुजारूंगी। अभी आपने नयनूर से गीत सुन रहे थे, संगीतकार एम अशरफ और इस गीत का लेखक है कलीम उस्मानी।

0: ये तो कुछ नहीं खा रही, जो दो बूंद पानी में आ जाती है। जानते हो, अगर हम शहर में होते तो चाहे आंधी तूफान या बारिश जो कुछ आ जाए, हम लोग मजे से किसी क्या के रेस्टोरेंट में डांस कर रहे होते।
1: अच्छा, अब देखो।

ढोल बजा ढोल ढोल दानिया भी आपने हेमलता मुकेश महेंद्र कपूर और उषा त्रिमूर्ति से गीत को सुन रहे थे। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, इस गीत का लेखक है गुलशन बौरा।

खिले गगन पर उड़ते बादल आह आह धूप में कर जा मेरा खेत सारा। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी आशा भोसले से गीत सुन रहे थे। इसमें देखा जाए तो 2:05 एडिट हो चुका है। आप फावर रेडियो पे चून है। हमारा और आपका मिलन सिर्फ 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद रेडियो फाहन के अनाउंसर साथी राजन द्वारका जी इस प्रोग्राम को ऑफर लेगा।

तुम सबसे हसी हो और सबसे जवान आज मेरी नजर में आई हो। अभी आपने महेंद्र कपूर आशा भोसले से गीत सुन रहे थे। संगीतकार ओपी नैयर और इस गीत का लेखक है एस बे बिहारी।

हम भी हैं तुम भी हैं दोनों हैं आमने सामने भी आपने लता मंगेशकर गीता दत्त मुकेश मन्ना देवी और महेंद्र कपूर से गीत को सुना रेडियो फाहम के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में अगला गीत की तरफ हम आप सबको लेकर चलती।

हम तो तेरे आशिक है सदियों पुरानी, चाहे अब तुम मान चाहे ना मान वो आपका प्रॉब्लम है। अभी आपने मुकेश और लता मंगेशकर से गीत को सुना।

दिल संभाले संभलता नहीं, अब मुझे इजाज़त दे दो घर जाने को भी। आपने लता मंगेशकर और मुकेश से गीत को सुना रेडियो फाहन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में।

Bis dich in Fahrhorn hinterst deine Rede oder absolut hip Programm Gito ka Sangam. लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होतों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होठ है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होठ तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर कोई बात नहीं, होठ तो होठ होते हैं। तेरे होठों के फूल जो है प्यारी प्यारी।

मेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूंगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे जोन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

तो मैं ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठों के फूल आप सुन रहे हैं आप ही का हैप्पी सीजन फाइव होने दिखाई दे रही हूँ राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्प का क्लोप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

मेरे प्यार में तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले एक गीत सुना।

जबडो होते हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज आते हैं, एक दूसरा आवाज भी अंदर से आते हैं दोस्तों। आपकी बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरे होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल आप सुने हैं। अगर आप, अगर आपका ख्वाहिश है, अगर आपका ख्वाहिश है हो चुमने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

क्या ख्वाहिश है हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahun Hindustani Radio.

आपी का हैप्पी स्टेशन फा होने हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। हर एक काम जो आपको रेडियो के सरे कराना, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0035 2823 तार का नंबर है। आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। हो माजी चल, हो माजी चल, फिल्म आया सावन झुमके का सॉन्ग है। निगन शस्त्र में जो फिल्म रिलीज हुआ, आशा परेख एंड धर्मेंद्रा दोनों फिल्म में काम किया।

आज ही चल के बाहर निकली फिरन शस्त्र का एक फिल्म का एक सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ। उन दिनों में दोस्तों अगर आपको पैसा नहीं है पिंडा बांगी स्टालर्स पर तैर लोश का कार्ता खरीदने के तो आप फिल्म नहीं देख सकते थे। इन दिनों में तो दूसरा रकम है, मैंने लोग तो है टेलीफोन पे फिल्म देख लेते हैं, लेकिन उन दिनों के बाद है जब फिल्म देखना बहुत मुमकिन नहीं था, आसान भी नहीं था, पैसा होना चाहिए था दोस्तों। और पेश हुआ निखिली फिल्म शस्त्र में फिल्म आए मिलन की बेला। जब भी फिल्म बनता था तो प्रोड्यूसर जो था वो ढूंढता था एक कलाकार को, रेंद्र कुमार का ऑफ रोल था, लेकिन एक दूसरा कलाकार एक बड़ा एक्टर को खोजता था कि वो जाकर इस फिल्म में काम करे क्योंकि फिल्म धूमधाम से टॉप पे आवे। तो किसी ने नहीं नाम दिया, किसी ने नहीं फैसला किया इस फिल्म में काम करने को। तो रजेंद्र कुमार खुद धर्मेंद्र के पास गया और धर्मेंद्र से बातचीत किया, चलो मेरे फिल्म में काम करो। तो धर्मेंद्र मान गया, इस फिल्म में काम किया दोस्तों। लेकिन फिल्म के बाद क्या हुआ, इस सॉन्ग के बाद मैं आपको बताऊंगा।

जिंदर कुमार सैरा बानू के साथ और धर्मेंद्र शशिकला के साथ, और धर्मेंद्र ने इस फिल्म में नहीं खाती फ्रॉल अदा किया, जिंदर कुमार का तो होफ रोल था। लेकिन दोस्तों इस फिल्म रिलीज होने के बाद हर एक लोग फिल्म को देखा, धर्मेंद्र को और पसंद किया राजेंद्र कुमार से ज़्यादा। राजेंद्र कुमार को जब इस बात से मालूम हुआ तो बहुत गुस्सा में आया और वो कहा कि अब मैं धर्मेंद्र के साथ फिल्म नहीं बनाऊँगा। लेकिन पैसा पैसा पैसा, जहाँ काम मिलता है वहाँ काम करना चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद एक दूसरा फिल्म फिर ये दोनों ने बनाया, ये दोनों ने मिल के इस फिल्म में काम किया। अभी सॉन्ग के बाद फिल्म आई मिलन का बेलका, एक दूसरा सॉन्ग के बाद आपसे मैं बताऊँगा। तुम कमसिन हो, नादा हो, सुख हो, होली भी हो,

फिल्म आय मिलन का की बेला का सॉन्ग अभी आपने सुना। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरा फिल्म जिसमें फिर एक बार राजेंद्र कुमार का होफड़ोल था और बैरल था ना धर्मेंद्र का। फिर भी फिल्म देखने के बाद लोग धर्मेंद्र का और पसंद किया और राजेंद्र कुमार इस बात से खुश नहीं था। उसी फिल्म का सॉन्ग मैं पेश करूंगा। गीत सुनने के बाद आपको जरूर पता लग जाएगा किस फिल्म का बात मैं करता हूँ। माला सिन्हा भी इस फिल्म में काम किया, राजेंद्र कुमार, कुमकुम, नसीर हुसैन और बहुत से लोग।

0: जरा जाते जाते
1: फिल्म ललकार दोस्तों, जिस फिल्म में राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र साथ काम किया और फिल्म देखने के बाद लोग धर्मेंद्र को और पसंद किया, क्या बात है दोस्तों। उन दिनों में धर्मेंद्र एक टॉप एक्टर नहीं था, लेकिन राजेंद्र कुमार एक जुबिलियम स्टार था दोस्तों। फिर भी धर्मेंद्र को लोग बहुत पसंद किया इन दोनों फिल्मों में। एक दूसरा फिल्म का कहानी और है, पहले सॉन्ग चलेगा।
2: गीत गाता हूँ मैं।

विनोद मेहरा ने अपन दिल के बात पियानो के साथ कहा है दोस्तों, और बगल में राजकुमार एक सिगारा पी रहा है। प्यार मोहब्बत कहानी इस फिल्म में, और फिर भी विनोद मेहरा इस फिल्म में काम किया। विनोद मेहरा के बारे में एक दो बात होगा, एक दो लाइन चलेगा। मुंबई पहली टेक में इनका घर है और पैदा हुआ है निखिल फैम फिर तक अमृतसर पंजाब में, और पहला काम किया है छोटा सा रोल, छोटा अभी उतना उम्र के नहीं, मैं सोचता हूँ 15-16 साल के था, तो एक रोल अदा किया ये फिल्म रागिनी में। और विनोद मेहरा ने 4 बार शादी किया दोस्तों। पहले सॉन्ग चलेगा, उसके बाद हम आपसे बताऊंगा किस किस एक्ट्रेस के साथ विनोद मेहरा शादी रचाए।

विनोद मेहरा। विनोद मेहरा चार बार फिर के रेस दिशा मानपत्रो, पहला बार मीना द्रोगा से शादी किया, दूसरा बार बिंदिया गोस्वामी से शादी हुए, तीसरा बार जीपी दत्ता और चौथा बार रेखा मशहूर एक्ट्रेस रेखा के साथ शादी किया। जब विनोद मेहरा रेखा को घर पर ले गया शादी के बाद, तो विनोद के माँ ने ये रिश्ता नहीं स्वीकार किया और रेखा को रेखा के साथ बुरा या बुरा बुरा बात करने लगा, और इसी कारण रेखा ने विनोद को छोड़कर विनोद से रिश्ता तोड़ दिया और चला गया विनोद के घर से। जी हाँ दोस्तों, चार बार ये आदमी शादी किया है। एक दूसरा सॉन्ग भी चलेगा विनोद खन्ना का, फिल्म घर का, निहरी आख्तन सीफन तक में जो रिलीज हुआ।

चाइना, तुम क्या होता है, तुम कौन हो? जहां देखता जहां देखा सामने नजर आते हो तुम, जहां देखा सामने नजर आती हो तुम, प्यार के परछाइयों में हमेशा याद आती हो तुम, मेरे ख्वाबों के दुनिया में रहती हो तुम, मेरे पास आके मुस्कुराती हो तुम, मोहब्बत की राहों में आके तड़पाते हो तुम, प्यार हमें देकर फिर दूर चले जाते हो तुम, कौन हो तुम? धर्मेंद्रा, दोस्तों धर्मेंद्रा एक मर्द जो प्यार करने के लिए जब प्यार का समय आया दोस्तों तो वो झगड़ा किया, अपने बच्चों के आँख में आंसू भी देखा, शादी करने के लिए अपना धर्म बदला वगैरह वगैरह, सिर्फ अपन प्यार पाने के लिए दोस्तों। वो सोचा था कि ये जंग उन्हें अपने प्यार के बाहों में परछाई की तरह बांध लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सॉन्ग चलेगा, उसके बाद मैं बातचीत करूँगा। धर्मेंद्रा, आप जानते हैं, हेमा मालिनी से भी वो शादी किया।

वृंदा का प्यार जो हेमा मालिनी से था ये गलत निकला। जी हाँ दोस्तों, ये बात गलत हुआ। आज जब धर्मेंद्रा को सबसे ज़्यादा सहारा की ज़रूरत है तो वो नहीं है, हेमा मालिनी नहीं है। साथ देती है उनका पहली बीबी, उनका धर्मपत्नी, जिनसे पहली बार शादी किया प्रकाश कौर ने। और धर्मेंद्रा का उम्र तो इस वक्त 90 साल से उच्च और ज़्यादा है दोस्तों। और हेल अनस्तक्षिक, आप जानते हैं जब उनका समय था, धर्मेंद्रा का समय था, जब वो मैदान में खड़ा हो जाता था तो एक पहलवान के तरह, और जब गुस्सा जाता था बात करते थे तो लोग दर्द आते थे, वही धर्मेंद्रा दोस्तों। आप जानते हैं उम्र के साथ सब कारोबार चलता है, जो उम्र कम है तो आप अभी बचपन में हैं, और जब उम्र बढ़ता जा रहा है तब जवानी आ जाते हैं, उनके बाद बुढ़ापा छा लेता है। फिर भी ऐसी तो जिंदगी है। एक दूसरा फिल्म राजा जानी, जिसे धर्मेंद्र अपन स्वीट हार्ट हेमा मालिनी के साथ काम किया, उस फिल्म का

नी हो राजा जानी, हाय नीली आंख वाली, है नीली आंख वाली तेरे मतवाली चाल, तेरी गुलाब जैसी होठ, लाखों में एक तू ही तो हो, लाखों में एक तू ही पेटो हो, जिस पर हम है बेहोश।

आय हाय, तूने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है? मैंने सोचता हूँ कि ये काम हर एक ने किया होगा। प्यार तो हर एक करता है, प्यार बांटता। चलो दोस्तों, प्यार है तो उन्हें बांटना चाहिए। और अगर आप जानते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आँख से शुरुआत होता है और जाकर दिल में समा जाता है। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, हो साथी चल।

0: Hindustani Radio.
1: आप एक हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संग्रह।

प्रोग्राम में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जो चटनी का नाम लेता हूँ, चटनी सॉन्ग तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। Let's dance!

सोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए क्या बात है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग सर तो तैयारियां कर दिया है तो उतार के बिग गया है दोस्तों डांस कर रहा लेट्स डांस

ग्रेट मेमोरीज, ग्रेट मेमोरीज, ताम ताम भोजपुरी सॉन्ग चलेगा। हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो, वह प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ साहब यूसुफ भी बैठा हुआ है।

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान, रवि सिंह एंड नादिया सिंह, दोनों की आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

की बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग साउथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा निहरी सिविल सेस के बात है जब ये सिर्नांडिस आया और उसी समय पर एक बार बना था डिस्ट्रिक्ट पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पटा पटा।

रेडियो मकेबा के बाद हिंदी बबलिंग मैशअप धीरज सक्सेना एंड नाथान, शो टाइम शो टाइम शो टाइम दोस्तों।

कला न जाने जात सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की बैगा।

दोस्तों हम तुरंत बढ़ जाते हैं अपना समाचार को लेकर। और समाचार क्या क्या होगा दोस्तों, आप लोग को तो पता है, जॉनी पूरा दुनिया को शेयर कराएंगे और करा कर वापस हम आ जाएंगे। अपना सूरीनाम और नीदरलैंड का भी कुछ खबर आप लोग को हम जरूर आज बताएंगे दोस्तों। 15 बरिस के 15 यारख

0: की दुनिया क्या है, और 15 बरिस के लड़का सूरीनाम देश में भैया, और गैला एगो क्लीनिंग साख जेकर नाम बा कैली फैशन, लतूर वेख में भाई, और गैला हुआ सले पर भैया, सले पर चोरी करे और कपड़ा चोरी करो, ये लड़का के भविष्य का होगा भाई। 15 यारख केन केंत मुतिक्षा है एंगलग, और उकर भविष्य का हुई रात के ही गैल है भैया। ऊपर से क्वालिफी जेर दे दिवस्ताल करी से भैया, ना सोचे दुकान में गए ले और चीच ले के ये भीम चल गए, ना भैया प्रोफिशी नेल दिवस्ताल करी से, और गैल है कपड़ा और स्लेपर चोरी करे भाई। हाँ, और बोले है एखनार जो रहसा के सी, हाँ बोले सनिचर के 1 तारीख अगस्तस के 10 बजे बोले हम अपन दुकान मोई से बंद कर ली है, सोमवार के सवेरे बोले व्यर्थ है दौर अनुभवा कर फान फास्ट फूड रेस्टोरेंट खबेल मैंने मेड द डीलिंग दैट एयर वाज इन ब्रोकन। वहां पे एगो वक्त रहा फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सवेरे सवेरे के बेल कही बोई तो दुकान तुरान है, और अंदर नेमर भैया दैट द सही देयर फन विंकल ओपन स्टोन, और बोले हे फरमूद दैट द दैट इज ओवर द ओम हेनिंग सेन गेक्लोमन एंड फॉरवर्ड्स फियर द सही देयर द विंकल इज बिनन गेड्रोंगन। जो कंट्रोलर भैले भैया तो बोले टी शर्ट गईले और मेरक अंडर आर्मर सेना के नॉर्थ फेस एम्बेसी रकम रकम कॉर्ट ब्रुक सब चोरी हुई गए, सिपाही गए और फर्स्ट किल इन खुद पकड़ान है भैया ऑन द सुकरी से, बोले हैगा तेज से पुलिस और वेयर द फर्स्ट किल इन द खुद रे बस लाख रोमन एखनार हर कैंड दे से लातर अस एक दोन फन जैन जाग भैया, और 15 बरिस के एक येरेमी एम पकड़ी से ओके, और गैल हैगा बोले ई लौंडा एगो लौंडा रा करिया करिया ई बाइक पे लतूर वेक में रही तुन है दुरन मन वेट आंखस प्रूक मैंने फरसूक ओम लिफ्ट फॉल्कस हेम हाथ दे समान अ ग्रोत जिम्बोतास एन अ स्वार्त प्लास्टिक सक में क्लीडिंग स्टुकन बाई सिख, बोले द फरदख्त फरक्लार द फेल दा से सामन ऑफ द ई बाइक फरत्रोकन मार बै हेट सीन फन अ पुलिसी द तासन ऑफ द ग्रॉन खोईदन एन वेखरेंदन करिया नाइकरा 15 बाईस के लुंडा के 3 गो स्लीपर और फन आले से के पकड़ ली से हमारे जनता। तो आज हमारा सूरीनाम के भविष्य देख ले भैया, 15 यारख्योंग और शुरू कैसे अभैये से दुकान तूरे के चोरी करे के, तो ये अपन तुकोम्स में भैया इससे कर एगो बहुत बड़का का बोलेगा डिफ रहेगा अने का बोलेगा माफिया रहे भैया, वहाँ जो छोटे पसे ये सब चीज करे लगिए तब बड़का हो तो के और एरफारिंग हो जाएगा। तरी रखेरिंग के ओर हम जाए भैया, सीमोन और गैगरी रुसलान के रखेरिंग के ओर हम जाए है नानी, तो बातचीत ई हो रहा है भैया, बड़ी गर्मी गर्म है सूरीनाम देश में, और अभी आप बताएंगे हम बताएंगे आपको कि सेड्रिक सिम्पसन सैमसन का बोली से जनता बहुत नाराज है प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन के, बोले एक बरिश हुई गई है, बोले अब देशवा में इक्को फर बेहतरिंग न आए, यस ओही के आदमी लोन कपड़ी लोन अब क्लाख करे है कि बोले और खराब हो गए भैया संतोखी के रखेरिंग से, बोले और ज्यादा खराब हो गए हैं। तो यहाँ जेनिफर सिमोन जो हम लोग के प्रेसिडेंट है सूरीनाम के, और बोले हैगा बोले है ओकर कैबिनेट जो है मिनिस्टर इन हर कैबिनेट, बोले वो मांगेगा अरे शिफलिंग भैया मांगे अरमियन के निकारे, तो एक बरिश हो गया था अब तू जाए निकारे सूरीनाम के गो कानून है भैया, जे एक बरिश तू मिनिस्टर बाटे तब तू जिन चुके निकार दी तो तू जिंदगी भर पैसा पइए, बहुत उसके रखेरिंग में भैया 50-60 गो एक बरिश के बाद में निकारत रहा उस सबके जिंदगी भर पैसा मिली गा ऊ एगो स्मेरख अन हेल फिश ऐसे बोल ले भैया अन पॉलिटिक हैगा कि एक बरिस तो के हम लेला तो अब ओकर बाद में फिर एक मेला धरबे तो फिर एक मेला का धरबे जो ने सब के जिंदगी भर तुसी का फौस पई खरातस में और जिंदगी भर पैया
1: पैसा पाइए थे एक बारे में संतों की ब्रह्मस्वाई के रखेरे मात्रा ई वेतवा निकारे मालूम न वेतवा निकार पाए रहा कि ना निकार पाए रहा और यहाँ बतावे है का मांगे है रेशफल करे वेलफिन से दाते मिनिस्टर से इनवार एंड मेयर सोमुतन खबीरन स्टार्ट सोफर से नाम फॉर द तेजस रखेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस मांदा आन कि ओकर रखेरे ओवरनाम vorige jaar is gebleken dat hij haast alle minister heel veel kapot was en dus gerepareerd moest worden. Lekker niet, maar dat je dus toe bole, je hebt altijd mensen die een extra schepje erboven opzetten. Isabaan Simons betawe he, maar na betawe he, ga je reshuffle kerie, minister wat ke niet kerie, toe paisoa paai ke na paai, oker baare me na likhi se hiya, bhaiya, staatsu bana durken dat de reshuffle aan de ene kant iemand anders de kans heeft om de minister het werk beter te doen, maar de andere kant kost dat het land ook veel geld, vandaar dat zij beter vindt om daar waar nodig minister te ondersteunen. Steunen, willen volgens Simon zorg er gebrek van decentralisatie in het land. Komende jaar is het jaar waar ik graag wat meer ga werken aan de herstructuring van de overheid systemen. We willen werken naar een raamwet. We willen werken, toch het ik maar eens met kan, dan ga ik mevrouw Simon. Over het jaar president moet werken. Nu is de vraag, John Adamien keer is zoveel keer de minister, gaan ze wel de geld krijgen? Salaris de hele leven. Of niet, want als die mensen, het moet zo zijn, als je je werk niet doet, moet je ontslag krijgen en dan moet je ook geen cent krijgen. Ga maar solliciteren voor een ander werk. Zo is de leven er. Het moet niet anders zijn. Wij zijn in Suriname niet zo ontwikkeld. Artemange en Miloke, ik wil luxe leven dat we op deze manier 1 jaar minister blijven en daarna ontslag geven of een reshuffling en dan word je de hele leven namelijk verzorgd door de belastinggeld van onze bevolking. To ye baat hai hamari Suriname ki janta. Ab dekho yahan pe batawe hai रखेरिंग बोले सिद्ध ए रेपराची फासे बोले अबे हमने ठोंक ठाक करेला रखेरिंग वहां में एक बड़ी जोई गएगा रखेरिंग जिमोन के और रिसलांद के एनपीएस के और बोले हम लोग अबे रेपरेर करेला भैया तो के चाहे काम करे तो के चाहे रेपरेर करे के प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन बोलेगा बोले हम लोग के खाते को बहुत ऐदाखिंग आएगा अरे जे तू ले ले देसो हमें तो तू जानत रहे कौन चीज तू पइए तो बोले 3 तारीख अगस्तस के बोली से और बोली से प्रेसिडेंट en ze paleis mee boli ze staatsho boli ze gaan boli ik baris boli schetsen ze de prioriteiten voor de komende periode Simon bevindt de regering zich momenteel in reparatiefase boli he ga abbe oké hem loon spana ana leke regering wakke banayla bhaiya boli tutal putal laat je kon modo hai bhai to ye baat hai hamari janta Surinam ki aur Holland ki janta joon hamara program ko aur सुनने भैया हम जाए तेरी दिल्ली के ओर इंडिया की ओर अब इंडिया में भैया तू जाने हैं वहां पे ऑन्टविकलिंग बहुत जबर है भैया जब से नरेंद्र मोदी आयल है और जोगी बाबा आयल है देश के बढ़ंती बहुत ज्यादा है अब बोले दिल्ली में से स्टीफ इन ऑफ इलेक्ट्रिक फुर्तोइकन इस ट्राई टेकन लुक फॉर फेलिंग जो इतना धुआं हुआ है बोले उ धुआं खातिर बोले सब बंद करी और ज्यादा इलेक्ट्रिक सब कुछ हुआ होगा बोले इन ड्रिक विंकल खबी जहां दिल्ली में बा हाउसटार फन इंडिया और बोले हैगा वहां पर बोले हैगा फ्रागवाग्स से ऑटोस ड्रुक बेसिक मेट ऑपलादन बे दे वेनेगे बस्किकबारे लास्ट स्टेशन दिस बिल सिंबोलिसेर एन फन द ग्रोस्टे उइदागिंग एन बेलोफ्टेस फन द दिल्लीस एम्बिशियसे प्लान ओम एन स्ट्रालबिल ड्राटिस टू वरगुडन एन ब्रुग टू लुक वरफुइलिंग आन टू पकन एक तारिक यूलिके इंट्रोड्यूसेरदे दिल्ली अ न्यू बेलेट दैट is gericht in 2027 bole jada bole electric gaadi huan par chalega aur yahan pe bataye gaye bhaiya bole flexible and toughankar last station hua rahega expert bana dre ki delhi electrification moet uitgraden en meer moet inzetten op hernieuwbare energie om aan de stijgende vraag te voldoen mensen to ye baat hai hamare pyare प्यारे जनता तो आपको हम अपना प्रोग्राम को और आगे को सुनाएंगे भैया। नीदरलैंड में बहुत जबर झूरा है, जितना आदमी के तैन है सबके ब्रीफी गए हमें तक के अब पानी तो के ना चाहे तरकारी के सींचे के ओमदाद झूरा बहुत ढेर हो गए है दसवा में। हॉलैंड के बांची थे जितना आदमी के तैन हैगा जने क्रियासी तैन है जो तरकारी अरकारी बेचे है वो सब आदमी के अब पानी ना चाहे सींचे के। तब सोचो ये पानी ना है तो तरकारी प्यासे मर जाए भैया, ये वो बात है हमारे जनता। तो ये बात है हमारे दोस्तों, अब देखो जाए अब और क्या हुआ है। बोले वी एस एर बंग फॉर मारवेन, बोले मारवेन में के डरा यहाँ लिखल भैया। मारवेन रीबा के मानचित हुए है जो जिंदगी भर से एवन लंग फ्रांस रह गया फ्रांस कुयाना से और मारवेन तो जाने अल्बिना से। बोले हजारन लोग हजारन को इससे लीफंस लीफंस अदर बोले जिए हैं वहाँ पे, मछली से जिए भैया, हंडल से जिए हैं, काम से जिए हैं। बोले रिफिर फॉर मेन खेंस अने खमेंस कापन दी अनवेदर सैदर्स अल जेनरेशन लंग मेट अलकार लीफन। तोख लेक द मारवेन द opgelopen periode vooral een rivier van onzekerheid bolle te zijn geworden. Op bolle tijdens de Kruto Stoermans eiland mee abopke voorzitter Ronnie Brunswijk bolle hega bolle hego perka protocol hega stem kreke bare mee. Bolle democratisch mag ieder partij een eigen afweken maken. Op bolle heker bare mee Brissen se jarenlang se sarnaam om Frankrijk onderhandel kere hega betra afspraak kreke samelijk grens ke 2021 mein ego protocol bhaila onderteken bhaila toenmalige regering Brunswijk vice president se op een vervolgens consultatie met de grensgemeenschappen op een hega behandeling behandeling ke bare mein hamare pyare pyare meetha meetha janta। तो जैसे जैसे समाचार रहेगा आपको हम बताते रहे। अब देखो भैया एगो औरत भाई बड़ी चकल्लस करी से, हाँ औरत भैया सिपाही के ओतो लेके भागे। सरनाम के भैया सरनाम के बात है और ये बात हुए हैगा भैया लेसुन के रास्ता ओकर नाम बा कनोफ्लो वेख के बात है हमारे जनता। तो एगो रास्ता के नाम है कनोफ्लो, बाकी कनोफ्लो तो सुरीनाम में ना बवा है लेकिन रास्ता के नाम है नानी। तो एक औरत भैया सवेरे सवेरे सिपाही के ओतो चोराले भैया बैठ कमाग। बोले ओतो हुआ जो रहा अब ओके सब खोजे है तो जाए के पाई से कनोफ्लो वेख में भाए। कनोफ्लो वेख में पाई से बकी बस कारक तो हुआ ना रहा। सिपाही बोले हेगा बोले फुरते फिर द्री कर एन दे उकर नाम रहा जो लेडिंग फन अखेंट औरत है। बतावे फॉल्क्स द पुलिसी रिपोर्ट क्रीक दे बमांगने पुलिसी फुरते अंडर लेडिंग फन एगो सिपाही के नाम बा अवतार द ऑपड्राग असिस्टेंट इज द फलीने नाम बट नादात है दिस फुरते फन द डीएनजी वाज वेगनोमन। ओतो वाले के भाग गया बहुत सिपाही एक एक खोजी से भैया लेसुन वेख में जाए के पाई से। सिपाही सिर्फ येर द इंटेंसी इन हर कबीर रोंद मखेंता कनाल वेख एन द ओमलिगंद स्वेगन से वेगन अनफांगलिक सोंद रिसल्टान। और बताए गए ये हेगा ter plaatse werd ook de vrouw aangetroffen die het voertuig zou hebben meegenomen. Zij vertoonde volgens de politie verward gedrag, waarna om extra ondersteuning werd gevraagd. De beloof verward raar, beloof een mooie naam, mooie kamatra, bakkie sipaai koto leek toe peelbangel he. Bole omdat de contactsleutel van het dienstvoertuig niet meer aanwezig was, werd besloten de autosleepwagen weg te voeren. Toek ik heetje lege, maar kahan se lege? Jouratia ook er bare mee. यहां पर ना बताई से हमारे जनता किसी पाई के गाड़ी लेके सेवन चल गए हैं। तो जब मालूम पड़ेगा तो आपको हम जरूर जरूर जरूर जरूर बताएंगे। एक भाई और बहन भैया सबको एक अच्छा बंधन माने के दोनों के हाथ में हटकड़ी लगल है। हाँ भैया के हाथ में, भैया के हाथ में दीदिया बांधे हैं रक्षा बंधन। यहाँ भैया और बहनी दोनों के हाथ में सिपाही बानी से हटकड़ी लगाई से भैया हंद बुए लगाई से कारण कि बुई तारीख के भैया ये दोनों जात्रा के फॉल पे ना सांडर ये पे के सभन पकड़ ले से दुर्यक्ष भैया दुर्यक्ष टीम इस सबके पकड़े रहा पकड़ ले से भैया ये दोनों बोले है स्टोंट नेट नार है बैठन तो फ्रैक्चर कंधे सब कुछ हो ही गया रहा। अब वही तू जाने लास्ट पासपोर्ट तो चेक करके अब तू जाइए बहरे और बहरे चलिए प्लेन में और बोले हैगा एकर बारे में सिपाही फरमूद करत रहा कि दोनों फरदाख्तन को कोकेन बोले चस हादन इन खसले ना लॉलीपॉप बोले चस दुरुली ले रहा इसको तू फरमूद कर ले रहा और ये दोनों के नरकोटिका ब्रिखान पकड़ के ले गए हैं अंदर सुकरी से देखो तू ये फेफ तक यार फरमुदलक कोकेन अप नैचुरलक वैसे से uitgescheiden terwijl de 46 bolletjes heeft uitgescheiden 46 bolletjes op hij wat 52 vermoedelijk kokertjes bolletjes raam. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de man totaal 116 bolletjes zou hebben ingeslikt en de vrouw 91 bijna. De otra illele raam bolletjes na Berlijn bolletjes kokake bolletjes hey mousie tu samaj gai le hum kahan mangila कहां मांगी ले जाए हमारी जनता। तो हम जाए नीदरलैंड में भैया स्वोलक की ओर तो स्वोलक के जनता भैया एगो हो को बरूप संबंध तेकन कर ले रहा बरूप कर ले रहा स्वोल नारायण बकी सखवा सबन हराई के भैया ऊपर एगो इस प्राक कि एगो नवा आजद से ही जिस असील सुकर के खबाव हुआ आएगा तो हुआ के बोनर जो ने स्टाच हाखन स्वाल के होकर बरूप गैला एगो साख में सबन हार के खमें तब स्टीर में ओवर इन स्प्राक रोंद कौंस वा नियो असील सुकर सेंट्रम इन हुन वेक गमेंते ही volgezet gerecht op weliswaar op sommige punten onhandig maar niet onrechtmatig geopereerd februari में एक उस टिकटिंग है लीव बार स्टार्स हाखन बोले को कोर्ट खदिंग कर ले रहे कर बारे में और बोले है का अब स्ट्राफ ऑफ अन ड्वंग्स ओम 10,000 यूरो पर दाग चाहेंगा इन होकर बरूप ऐसे द स्टिकटिंग दा द गमेंटे अल फोरबरेडिंग फॉर द रियलाइजेशन फन हेट आसेट पर डायरेक्ट सो स्टाकन बोले जहां तरह बंद करे के अब स्टाफ ऑफ अन ड्वंग्स ओम फन 10,000 पर दाग एंड द गमेंटे पार्टिसिपेशन traject met de omwonenden zou starten. Zwolle vindt van sinds 2023 ongeveer 10 zo vluchtelingen op aan de Meeuwenland in de wijk Kamperpoort gaan. Locatie bolle 1 februari ke bieden we zaal mee. Stem de gemeente in met de komst van de nieuwe AZC in Staatshagen. Daar moet volgend jaar ruimte komen voor de maximaal charso asiel zoekers ke huwase bandariga. तो ये बात है हमारे जनता हम बोली कुछ असील सुकर के बारे में बताइए भैया जबरदस्त आगे लगल है इना दूसर देश में हम लोग के देश में भैया नीदरलैंड में भइल है नॉर्थ लिम्बर्ग्स तो ऑस्ट्रिम में भइल हैगा नेचर ब्रांड है जहां पे भैया बहुत जबर जंगल में आग लग गए है। हां नेचर ब्रांड है और बताएंगे लुक फोक्ट है कान ब्रांड फर्दर अप्लाईन दैट ब्लूसन ड्यूट नॉक सीकर टू वुड्सडक मेंसे यहां लिखले नो De brand breidt zich verder uit richting de oosten. Oor je maand in Noord-Limburgs de oosten mee. Betaalde je 100 hectare bij jarige he. Dat komt neer op 1 vierkante kilometer. 100 हेक्टार एक vierkante kilometer के बांचित हुए हैं। बुर्गमेस्टर जो नेगा uit de Haag जो ने gemeente Van Rijke बोले हैगा सब जोर तोर से बुतावे हैं। Gelukkig is er nog steeds geen materiële schade in de vorm van objecten op persoonlijk leed, zegt hij. Brand lukt zelf de ruiken in Friesland met zijn makke hoesapke door Agia hey. Friesland met zelf admike utra doelig hawa geil hey duwake. Obele de brand brak maandag aan het begin middag. Er is toen een Nederlandse alert verstuurd vanwege de rook. Opbollegen vanuit onder de meer Friesland, over IJssel, Gelderland meer. Melding bij de brandlucht gebaren mee. Toen gebaren we 100 hectare. 100 hectare. Agi se janiki hem lukke. Natuur brandweil he. Aru he Limburg mee. Venezuela के भैया ने सूरीनाम पैकेट पठाई से हाँ ह्यूमिटेर हिल वेनेजुएला के पठाई से और वो है हम लोग के सूरीनाम पठाई से और फोटो बने एक से एक भैया पाकी में सब सरनाम के फोटो बनावल है और प्लेन लगे थरल है कि इतना पैकेट हम लोग पठाईला वेनेजुएला में भैया हेल्प खुदरन और बोले द हेल्प अक्सी मांग देर सूरीनाम से अंडरस्टैंडिंग एंड द बफरिंड लैंड बोले हैगा फरवुस्तंद आरबीजिंग हुआ भाई ले और बोले हजार को फुल फुटसर पकेट पटाई से और एक पकेट 10 किलो और बोले हैगा ओमा है 52 टन रईस हैगा दुई कंटेनर भलल है फर्स्केप दाना फॉलो फिया से फ्रा अनफिलंदे सेंडिंग फॉर 9 टन तो एकर बारे में भैया सोशल मीडिया पे अनमी लोन बड़ी बड़ी नाराजगी दिखाई से कि हम लोग के देश के अपरे हेल्प काम है और तू फेनी सुईला के पठावे हैं बाकी हमारे जनता सूरीनाम के वो मुत ओक अकेर चल ले रे ओम आंध्र लंद ओक द स्टोन ना खाली अपरे के स्टोन हां जब देखो तो फैलाए रही हो तो हमें ई दे तो हमें ऊ दे तो ई कर तो ऊ कर जब दूसर देश में तो बुरलांड में प्रॉब्लम है ना मुझे ओ कर हेल्प आज द मोगलकाइट इज नेचुरली हम लोग के जनता के हुआ पर पैकेट के काम बा मैं मुझे ओक अंदर में से denken hoe de dingen zijn wat op Suriname met die pakket behoort hier als pas over he te hem lukke binnen jij lukker baren me bole ki pakket wat na patao दोस्तों एको 52 यार के आदमी भैया सिपाही के मारी से बदराई करी से भैया में द दूत और इचियो भाई एको आरे दिंग लगे भाई ले हमारी जनता एको 52 यार के सिपाही पुलिस फन सेंट्रम शहर के बांचित है परमारी बहु के बांचित है और बोले हैगा तुरतोना लंच में बोले इस इंसिडेंट हुआ भैल है जहां पे यू को हामा इन द बूथ है वार पुलिस अखंड बोले बेशक रहा अफंदल करके को अरेस्टिंग के बारे में उतरे में बोले फलूफ के बमुई दे फरदाख्त बमुई करी से बोले हर लहालक में द वर्कसम हीरे फन पुलिस अब बोले ओकर बेटवा फॉर और साक द फन अरेस्टिंग सेन खवीज बेटा हुआ जो रहा वही फॉर और साक कर ले रहा अब बपुआ गैला बमुई करे सिपहियन के कितलो पर काम ना मोई करे हैं ओंदास मेरद बफीलें ओम अफस्तान ते नेमें फन पुलिसी हर वेरक ते लाते दून ब्लीव द मान दी अग्रेसिव इंटिमिडेरेंड ऑब्स्टेलन दोर सेन गद्रा फुल बना देदल आन द आंदरेडिंग से बदरेक्ट एर वेर द अफहंगन हैंडलिंग फन द फरकेस ऑनगेफेल एर्स्टिग गेस्टोर्ड मेंजे और इसी पाही हुआ है और जेके अरेडिंग भैला ओके जाय के सो तू बदरेक्ट करिसेगा सिपाही लोन भैया और ऊपर से अदमिया सिपहियन के बोले हैं मैंने दूत है बदरेक एंड फोकस इन गेसिक्ट हैवन गेस्लागेस को तुन के मरबो करिसे सिपाही लोग के भैया चोट लग गए हैं और बोले हैं तब एक पकड़ के और ले आए के बंद करी से आउट ऑफ द फन पुलिस टांग द मान वेयर द पुलिस आनखोर ओवर गब्रा द अप टू जाओ सिपाही के बंद करी तो के पकड़ के कायदा तो के ना भैया अरे दे कर ला द पुलिस वार हिन वर्क डन ऑन डंक सुरिनाम से पुलिस एन हील स्लेक्ट द नाम इज सेन एन हील फील पुलिस एजेंट दी गुड सन जॉब डन मींस एंड ला दी मींस हिन वर्क ओ गुड डन सो गात इट एंड इट कैन नी अंडर्स अब भैया आप देखो तमाशा एको दुकान है सूरीनाम देश में भैया जहां पे मुर्गी बिका है नास्केप ओकर नाम बा और ये है शहर परमारी बहु के बांचित है
0: चोरन घुसल है दुकान में मौसी और ना गला मुर्गी के टंगड़ी चोरी करे। हाँ इसप गए लाख कलई से निकारे और कलई से निकार के भैया आप वही जात रहा। बस उतरे में सिपाही पहुंच रे दादा रे मैया दैया लेके कलईस फलईस बिक के चोर भागल भैया बकलईसवा निकाल ले रहा दुकनिया में से। बोले ले के भगल है मसीपाही भैया दौराई के सब के पकड़ ली से त अपि चोरवन हाथो से गेल लतवो से गेल मतलब हाथ से कलेश छूट गए और लात अब सिपाही के खइए। तो ये बात है हमारा सूरीनाम के हमारे जनता दोनों के सिपाही पकड़ के और ले गए है। बोले अब चल तू गाना गाओ उमा नांगा मांग गयो और उमा नांगा मांग ना गयो तो मुर्गी के गोश ना पियो खाई के जहल के बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं सुनाते हैं एक गीत आप लोग को हम सुना देते हैं उसके बाद हम तुरंत आ जाएंगे आपके पास हमारे सूरीनाम की हॉलैंड के और जनता। आपको कौन गीत हम सुनाई बहुत खूबसूरत है ये गीत

और करो तुम क्या क्या, लेकिन हम आप लोग को अपना प्रोग्राम को और आगे को सुनाएंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे जनता, हम जाते हैं अपना और समाचार को। और यहां बताए गए भैया, सूरीनाम देश में बड़ा गर्मी भैया, 40 खरादा हो गई है गर्मी। हेत और फिर तक खराद इन सूरीनाम स्टीफ का ऑन वेयर बैन ऑफ कॉम्स इन सूरीनाम, जबर पानी बरसी लेकिन बहुत गर्मी है। तो जे जे सूरीनाम को जाना भैया, आप लोग को मालूम चाहिए कि क्या बात है। ये 3 तारीख ऑगस्टस के बातचीत है। बोले है का माकन में द्रकन वारवीर को फॉलो दो रस तेर के तू नहीं मतलब काउंस ऑफ रीकन एंड ऑनवेस बे ऑनवेयर बैन बेनलांत में भैया, जबर पानी बरसी लेकिन 40 खराद गर्म है। यहाँ बतावे सवेरे सवेरे खरोतन दिल झूर रही और बोले संध्या कैसे बोले सेफ डर तक तो फिर तक खराद सूरीनाम में टेम्परेचर हैगा और बोले हैगा मिनिमम टेम्परेचर 20 तक रहेगा। तो रात के साथ इतना तो भैया और बताए गए हैगा फॉल्क का बीच फरवाखती गल्फ फ्राइवेल डिस्ट्रिक्ट काउंस ऑफ द ऑनवेस बैन इन परमाणु बेवानी का लिखन टेम्परेचर ओवरदाग तुशन 24-32 ग्राद करोनी ने केरीसी पलविनी क्विक ऑफ तो 33 ग्राद में से। तो आप लोग को ना डरवाएला बताएला गर्मिया के सब कोई तिरक बोली बाप रे बाप, हम वो हद्दा उड़े के कैसे रहबे हम बोले कैसे रहबे, हमारे को लिखा कल गया है नाम नहीं लेगे कौन, तो उसको तो पता चल गया होगा कि कैसे है चिजवा। तो ये बात है हमारे जनता, गर्म जो है गर्म जो कितने लोग को अच्छा लगे भैया, कितने लोग को तो बोले हमारा मान के गर्मिया ना में ठंडवा सहाइया है, बोले गर्मुआ ना सहा है हमार बात वही भैया। कारण की दोस्तों ठंडा जो है तो ठंडा है तो उससे आप अपने कपड़ा जो है पहर कर अपना देही को गर्म कर सकते हैं। जैसे जैसे ठंडा यहाँ है, जब बहुत विंटर है भैया तो यानी कि मोटा यास पहरो, भीतर में टी शर्ट पहरो, फिर तुराई पहरो, और जब और गर्मी है तो टी शर्ट ना पहरो, यास ना पहरो, तो फिर ऐसे। लेकिन जब गर्म है भैया तो लास्ट जो ना बिना कपड़ा के चलिए तब वो गर्म हुआ लगेगा 40 खरदवा। इसमें से हम जाई है एक 13 बरिस लड़की की ओर। 13 बरिस के एक लड़की सूरीनाम के भैया लंदन ओके दुई दुई को ले गए है नानी, ना गए लूस एंड मामा पढ़ावे नानी, ले गए ओके पेंशन में भैया। सूरीनाम में उजाने पर्दा वाला घरवा बड़ा ढेर है, तो खोरदैनवा घी दिया भीतर में, वो तो लगल नाटक खेला है भीतर कमरा में, धना धन खेला है। तो सूरीनाम में ये पेंशनवन चारों बगल है भैया और लिखल है बोले अपार्टमेंट डां जाइयो, सोचिए हम गली फकलांसी से जाइयो अपार्टमेंट वा हिर कले जहाँ कहाँ देखियो खरदैन है हुआ ना जाइयो। तो ये 13 बरिस के लड़की के शुक्रवार से ऊपर से स्कूल से एक 17 और 20 बरिस के लंदन एक ले के गए है मुंगो के पेंशन में भैया, वो है उस सूरीनाम में। तो मुंगो में ले गए भैया फरनोमन वार्ड कि ओकर माई गैल सिपाही में नालिश करी से कि ओकर बिटिया घरे ना आइल है, और बोले तेजे से ऑन द शू ब्लैक दैट इन मेच लातर सेल्फ टू स्क्वम, बोले ओकर माई जे ओके कॉन्फ्रेंस तेर करिस कि तू कहाँ रहले। तो लड़किया बोले हम दुई गो लंडन के संगे गरी पेंशन में है स्वेरक बनावे नानी। तो बोले द मुदर दीट आन खिफ्त और वही रोज जाए कि दोनों लंडन के सिपाही पकड़ी से और दोनों के पकड़ के बोले है मेंदर यार रख रहा है एगो, अब ही दोनों के पकड़ के लेके अब बन करी से। तो ये बात है भैया 13 बरिस के लड़की के और स्कूल के लंडन ने ले गए है और पेंशन में भैया मेंदर यार रख ना है स्वैरक बनावे स्कूल के भैया दूसर है स्वैरक गैला बनावे। तो ये बात है हमारे यारो हमारे जनता। भैया हम यहाँ देखिला सांद्रई के रईस खर्च जो बा बेना 2 किलो कोकेन लेके हबड़ा होत रहा, हाँ
2 kilo. Ik ben 34 jaar. Ik heb een kerk gemaakt. 2 kilo coca leke jatra bhaiya buitenland. और एक भी दृक्ष तीन पकड़ ले जा रही एक गो का पकड़ ले भैया दस गो हबड़ा हो जा है तो जो न पकड़ा वही लिखा है अब जो ना पकड़ा वो थोड़ो लिखा है और ये धल ले रहा अपन रईस कॉफर में भाए रईस कॉफर में धल ले रहा नेखती होंदत अख्तन देर तक खराम धल ले 2 किलो और बोले एक के नरकोटिका नरकोटिका ब्रिखा दे लेगे और पकड़ के ना तू लग बन करेगा जब तू इस ऐसन चीज करिए तो सुरिनाम में दृक्ष अच्छी जो आप फिर शुरू हुई है भाई बोले चश्माला पे आप लोग को हम पढ़ के बताए ना और यहाँ पे और कुछ बताए गए हैं कि अब कॉफर बाख में भी लेके और जा है हबड़ा हुए है हमारी जनता ये बातचीत है तो दोस्तों चोरी भैले भैया हाँ खवापंत रूफर्स भैया एगो माकन फोर्थ रैप्टर एगो ओतो के नाम बा सुरीनाम में औ है फोर्थ रैप्टर ओकर नाम बा हाँ सिरादन एंड 5,000 एसआर दे मारिस ओतो वो चोराई से और 50,000 कहाँ है हमारा है? हरीश मनोरथ मिनिस्टर फाइन जुसिसिर पुलिस से बोले देसवा रिश्ता कोई गे चोरी ओरी ना होवे बोले बहुत कमती बले दे रे भैया दिन दोपहरे हुआ बालकोन में कोई झलवा झोले और ओकर जे नका बोले हेगा सोना के केती फेती ले के भग गया अभी यहाँ देखो एगो करिया करिया खरीस फोर्थ रेप्टर रहा और ओकर हाउस कहते तीन अंगूठी और दुगो कॉन्टैक्ट लो तलफन अंदर फुरते दुगो मोबाइल और 50,000 एस आर दे लेके और लुटेरा लेके पेल भागल भैया और बोलेगा बना दिल दे रीडन वे रिक्टिंग voertuig is weggereden en is vooralsnog nog onbekend. Op het eigen nieuwe grondkissipaai ik er waren mee. Khoj bin kre hai jor tor se. Ab dekho mile hai ki na. Eerste hulp ke baad bhaiya blijf 24 uur open tijdens uitbreiding en renovatie. Te saban aanset jo na academy ziekenhuis. Bole hai ga saban renoveer kariga. Ma bole chahe renoveer kariga. Ziekenhuis wa wel 24 uur bolehega bareik bar rahega to hum boli aap log ko hum batai de ki Suriname ki janta na ghabrayo kuch rahi to aap log ne kar bare mein ek ko bunna chinta kare kaam ba aise to lo jai sake chahe reno faasi hue hai lekin aap ko wahan pe bahandle yani ki milega to ye baat hai dosto hamare yaro प्यारे प्यारे जनता स्टार न्यूज बतावे भैया बोले कैनेडी वेख में अतवार के भैया जबरदस्त कंट्रोल भइल है और बोले उतरे में एगो ब्रोफिसर जाय के भड़ भड़ भड़ भड़ कौतुक ऊपर चढ़ा दे इसे भाई नहीं को रेमोना कमात्रा कि अब सेतलक चढ़ा इसे महिया लिखल अब सेतलक सिपाही ऊपर चढ़ा दे इसे सिपहिया के स्टॉप टेकन दे इसे ब्रोफिसर ना रुकल जाए किसी पहिए के पेल दी से रानी फर के साथ आफे एम परकेट वाख बोले हैगा सिपहिया बोले आखिर ऑफ दैट मोमेंट रहा उसने लहिस कंट्रोल करत रहा ब्रोफिस के और बोले वेखर कर ले रहा स्टॉप करे के और जाए के को रुपड़े चढ़ा दी से स्नेल है इस मीट अपराध ने दत्ते इस कंट्रोल वेर खबरे राख्त ओक बेस्कादिग मेंसे है इस ओवर गब्राख ना तेरे पुलिसी बिरो अब देखो ओकर संगे का हुए का ना हुए जैसी पाही तो के रुकाई भैया तो के चाहिए रुक जाए के तो ये बात है हमारे जनता आओ देखो सब बोले हैं हमारा सिमोंस गैल है इंग्लैंड तो बोले गैल पैसा थोड़ो लेनी करे और एक बारे में गया दिन बोले रे बोले खोल कर थोड़ो गैला कर्जा लेवे वहां जब प्रेसिडेंट गोड़ निकारे दे सो ते सब के धुक धुके कपते रहे कि कहीं जाए के ऊखर रहे तो मैं कर्जा ना लेवे है तो सिमोंस या बोले खीर लेनी ऑफ कोर्स लो उतर बे बैंक ऑफ अमेरिका तो
इतना आदमी ना विश्वास करे अपन प्रेसिडेंट के जेनिफर सिमोन सो मार के बोले ऑन कैन करे है कि वो लंदन गए लहा बोले लीनिंग इफ आपका स्लोट बे द बैंक ऑफ अमेरिका फॉर स्टार्ट सो वार एंड द गस्प्रेक आइसोलेटन बदल ओम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ऑफ द बोर इन द इंटरनेशनले financiële deskundigen naar Suriname te halen in aanloop naar de verwachte olieinkomsten. Bolle hem kardana lili he. Aur aise aise baat he. Hamare pyare pyare janta niwa khron ke sipahi lo bhaiya. Aur bolle Melfis Pinas ghar ghar ghume he. Aur janta se huwa baat chit karega. Ki tulon konchi mange he hiyan pe. Janta se mange contact kare. Inspector Lord. Aur huwa janta kitra bolle bolle hiyan pe hang yongra dukaan lege bolle bahu ढेड़ है हुआ दुकानिया लगे खड़ा होई के दारू पिए भैया दारू पिए है और अन्न बन फिस फास भी करे जे हम लोग और जात जे जाएले दुकानिया में और बोलेगा ओकर बारे में बोले तू लोग कुछ कर और चोरी चपाटी हमारे देश में इस तपलास पे दोस्तों का हम बोली बोली जो नहीं खतीब बतिया हम नहीं खतीब ना बतियाला हम वही बतियाला जैसे तोरिया है ऐसे बतिया है ना हमारा नानी ऐसे बतिया है और दूसर बात ना है हमारे जनता तो ये सब बात है सूरीनाम देश के हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम के जनता एक गीत हम आप लोग को सुनाएंगे उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को धीरे धीरे खत्म करेंगे और वो गीत क्या है आप खुद ही सुनिए

0: बस दोस्तों इसी गीत से एक दो समाचार आपको हम सुनाएंगे, उसके बाद में अपना प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे। जैसे कोर्ट न्यूजमैन से दी ओली सी कम तो भी अब देखो भैया एगो मलाई है ओकर नाम बा पावी रो रे जो सलाम से फॉलो कुछ एक दीप स्कामर फोर है स्मेर रख बेनन स्टार भैया इस बोले गंधा है देसवा पर हमारी बहु गंधा है हुए के पार्लियामेंटारिया बोले पावी रे जो बोले जनता के चाहे हुआ पे बहुत शर्म के मारे में डूब मरे के हिंदुस्तान में सब बोले ना डूब मरे के चाहेगा तो वारे जो बोले भैया बोले सलाम के बेनलान बोले स्मेर रखेगा उसके बाद में साथ साथ हम चलते हैं हमारे जनता स्लेमी स्टाफ वेर एट आत्विन तक एक ब्लेव फन प्रात तोत में ग्राफ और मी मुर्गी पोसे है एक बदराइफ है और बहुत नहीं खाती फिटेज बतिया रखे रिंग के बारे में ओम द दसुआ नामुई चले साथ साथ भैया ये वो इने सीफ तक यार के आदमी के लाइक मिलेगा अफू बाका वेख में भाई डाम पे मिलल है साथे साथ हमारे जनता फ्रांकराइक के अम्बेसडर जो नहीं सूरीनाम बोलेगा फ्रेंस अकॉर्ड के बारे में चाहे खुशप्रेक करे तुलन जानो है सेड्रिक सिमोंस जो रहा और वो बोले रहा बोले वाई वेले खेन हेन खेन फ्रावन आज प्रेसिडेंट में लेकर बारे में जितना एनडीपी के औरत रहा सूरीनाम में और बदल करेला दिए नाम में सब निकल के डाम पे खड़ा हो गए बोले है बोले कैसे तू बोल सके औरत कहना चाहे प्रेसिडेंट हुए के सिमोंस यानी कि सैमसन बोले सेड्रिक सैमसन बोले है बोले एक क्वार्टर के इंटरव्यू जो हम कली बोले पूरा सुन तो लो खाली एक मिनट हुआ वाला सुने बोले हम ना बोले कि औरत के नाम आखे करे के बोले औरत लोन हमारे के क्लाक करेगा कि औरत प्रेसिडेंट आए ले बाकी तब वो कुछ ना कर पावे है बोले ओकर बारे में बोल ली बाटी कि औरत प्रेसिडेंट हैगा चाहे ये है मां वो आए के फ्रंट ओर लख है दे नाम में ना देवे बोले ओकर बारे में बोल ली है और एकर बारे में इंग्रिड बाउटर्स जो ने बाउटर्स का औरत बोले हैगा बोले बोले स्क्रू ले लेकर बोले खाली चिल्ला है सैमसन तो सैमसन इंग्रिड के बोले बाउटर्स के बोले है बोले पहले इंग्रिड बाउटर्स के चाहेगा जितना ना बस्तांद औरत है उसे माफी मांगे के जोन ओकर आदमी जोन है और फुटल भाषा में बोले भातार जोन ओकर है बाउटर्स जोन मर गए है बोले ओकर बोले चाहे इंग्रिड के ना बस्तांद के या औरत लोग के चाहेंगे फॉर ऑस्किल करे के बोले हम ना कर फॉर ऑनस्कुलिंग लाद द फ्रॉ फन बाउटर्स इज फर्स्कोंडिक फॉर ऑनस्कुलिंग आन बी फॉर द नाबस्तांडे जेकर बाउटर्स आदमी लोग के माढाड़ी से दोस्तों जबरदस्त आगे लगल है और ये हैगा वोनिंग ब्रांड ऑन द मोन सो की वेख में सूरीनाम फॉरलोर द अफकोल ओपन फिर तक यार 166 हेक्टेयर जंगल दोस्तों। तो यहां तक था हमारा देश और विदेश के समाचार जो आप लोग हमारे जॉनी नंबर वन के जरिए सुनाए हैं। नीदरलैंड के आखिरी भैया एगो आदमी मोंटर बाइक चलावत रहा और नीदरलैंड में एगो वॉल्फ देखी भैया और वॉल्फ के देही में एक को बार ना रहा भाई है सिकतर हां आपल दोरन के बारे में है तो आप लोग को हम बता देते हैं। यहां से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करने का आए हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम है जॉनी नंबर वन। राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सत श्री अकाल।
1: एक विशेष सूचना सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। आस्तांद दोंदर दक्षिण और खिस्तस को करीबन 11 बजे एक आवी खत के बारे में हम बातचीत करेंगे श्रीमान राम राम भारत सिंह से। आपको शायद याद होगा जो लोग नेक दिन फेफन से इब्तक से पहले आए हैं उन्हें करीबन 25,000 से नवाजा गया है, लेकिन जो नेक दिन फेफन से इब्तक के बाद आए हैं उन लोगों के बारे में श्रीमान राम राम भारत सिंह आप सबको बताएंगे जो इस वक्त आओवीर से। तो भूलना मत अपने हिति प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से परिवार से कह देना कि दोंदरदास को करीबन 11 बजे आओवी खत के बारे में बातचीत किया जाएगा श्रीमान राम राम भारत सिंह के साथ और उन लोगों के लिए जो नेक दिन फेफन से इफन तक के बाद आओवीर्स हुए हैं और होलंद आए हैं।

और खेतवा में हो गई लहरिया गुलरी के फूल से आज हम अपना प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। आज को ये घंटा आपको हम घुमाएंगे नचाएंगे सजाएंगे कुछ रीमेक्स बैठे गाने से आप लोग के सेवा आज हम करेंगे। जॉनी है हमारा नाम।

लेलो लेलो रे सजना और नाचो नाचो रे सजनी, नाचो नाचो रे सजनी और नाचो नाचो रे सजना। आज आप लोग को हम एक घंटा करीब कुछ हॉट वॉन बैठक गाना रिमिक्स, कोई फिल्मी रिमिक्स हम सुनाएंगे आपके दोस्तों। और दोस्तों कुछ चटनी सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं, ऐसा लगता है और क्या लगता है आप खुद ही सुनिए।

और चाहे आज मुझे ना पसंद करो, और चाहे कवाड़ी बन करो, और चाहे दरवाजा बन करो। दोस्तों आज कुछ रीमिक्स सॉन्ग्स से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर।

270 का हिंदी मशूक, और उसके बाद हम चलते हैं इस गुप्ता नहीं है, नहीं इस छुपता नहीं है, सुजल उमराव का ये सॉन्ग है। इस वक्त ये नौजवान जो है, और ये नौजवान बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं दोस्तों।

और तस्वीर नहीं, तस्वीर नहीं बनती दोस्तों। और ये सब नौजवानों का यौवन सॉन्ग है। और हम चलते हैं उसके बाद जाते हैं, आओ वो है लेडी लेडी एंड लेडी संजना की ओर। आओ मिलकर और झूमे नाचे और प्रोडक्शन बैग ज्वाला चटनी।

और हिलाओ और हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर जोर से हिलाओ। तब तो बलवा बोली, धीरे धीरे ना, जोर जोर हिलाओ। उसके बाद हम और एक चटनी की ओर जाते ही आओ सुना जाए, ये भी एक हॉट वन है।

और ऐसा चतुर मोरे भौजाई रे, और जब भौजाई चतुर है तो देवर वासी जरूर माने लगेगा। तो हम चलते नीले गगन पर। तो नीले गगन पर क्या होता है?

0: और नीले गगन सी और चले, तो नीले गगन के बाद हम चलते हैं और एक होन अंद्रियाना ठाकुर और दिन
1: शिका
0: शिका नहीं।

और सीखा नहीं, सबक तूने प्यार का तो और क्या होगा भैया। उसके बाद चाहते हैं तेरी मेरी गल बन गया है।

0: और तेरी मेरी गल बन गई है हमारी यारो। तो अगला गीत चलते हैं कविता राम की सुन पायलिया। ओहो चलो हम बीच सा बताऊं सर
1: झनकार
0: लाओ मेची स्विंग स्विंग।

0: और दिल देना ही पयाए और दिल लेना ही पयाए। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए ये कौन सा गीत है हमारे सुनने वालों। सुपर सॉन्ग फन नहीं खनते रोमांटिक सॉन्ग
1: सर की जो सर से वो धी
0: द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार जानू मेरी महबूबा सॉन्ग दिनेश।

और तेरे चुनरिया दिल ले गई नहीं खत का ये यानी कि हिट बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाते हैं। तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं, रोमांटिक फुल सॉन्ग है और तेरी चुनरिया के बांध में हम जाते हैं। देखा तुझे तो क्या होता है, क्या होता है, दिल में कुछ मजलता है।

तो मिट ना जाए। और दोस्तों और अगला नई खंत का रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग, यहां से जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम हम चलाते हैं।

क्या है हमारे यारो लवर्स के लिए बॉलीवुड सॉन्ग्स फॉर नीखन तक रोमांटिक सॉन्ग है जो आप लोग को लिए हम चलाते हैं राजा हिंदुस्तानी।

जी कर देखता रहूं, इतना प्यारा तुझे कौन बनाया है? रब ने बनाया है हमारे यारो। ये जो रोमांटिक सॉन्ग है बॉलीवुड नेगंतक का, आप सुनिए।

और जाती हूँ मैं और ढड़के जिया, तो ये सब बात तो होता ही रहते हैं। तो मोफी का नाम है कोबरा गिल, मैं मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: और नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है? है और ये गीत जो है, मैं हरदम किसी को और वो ढूंढता है, फिल्म के नाम ही रास्ता, रास्ते का पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किए हैं। सिंगर इसमें मुकेश एंड आशा भोसले।
1: मैं हरदम

और मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ और किसी को खोजता हूँ दोस्तों, एक रोमांटिक सॉन्ग के ओर।

और दोस्तों आज कुछ चटनी सोका हम चलाएंगे, कुछ गयाना क्या और कुछ सुरीनाम के भी चटनी चलाएंगे। और यानी कि त्रिनिदाद के बाद हम चलते हैं कविता रामकिशुन।

का ये है ये गीत हमारे यारो, उसके बाद में हम जाते हैं और आगे को, और वो है पर्वती पांचू की उर।

गौरी क्या हुआ तेरा वादा, पर्वत पंचू ने इस गीत को गाया है दोस्तों, गाया है। और आज कुछ चटनी हॉट सॉन्ग आपको सुनाएंगे, एंड ना चटनी को मैं नोक एंच फन कैन चलिक चटनी शोका।

और दोस्तों कैनिक सलीका ये सोका चटनी सॉन्ग है जो आप लोग को हम आज सुनाते हैं। और पारी करो जब एक ये गीत जो हम नहीं चलाएंगे तो कंप्लीट कैसे होगा।

और पारी करो और पारी करो के बाद में हम चलते हैं विदेश शाम की ओर।

कुछ खयाना सोका सोंग हम आप लोग को सुनाते हैं। आप जानते हैं रेडियो फहुन के पांच ऑल सेफ्टी इन हाउस, और जो भी आप चाहूं यहां पे आप सुन सकते हैं शेकी बेबी।

गीता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत हमने पेश की और फाउन स्थानीय रेडियो और गीत हमने निकाले हैं निकली फेहे फेफ तक से ओपन एयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो रे करे 80 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था, वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

Mighty Mukesh is the heart of millions. फिल्म सुनहरा संसार में से निकाले हैं नेक इतनी फैफन सेफन तक नौशाद अली के साज पर। और लता जी

लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

देखती हूँ जिधर आशा जी। जी हाँ, आशा जी फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं, लेकिन त्वेन शस्त्र और ओपेन नैयर के साथ पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, जब आप भी हैं और मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है।

कारण कैसे हो मुकेश जी और लता जी मिलके आपको सुनाएं मदन मोहन के साज पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं, महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन, फिल्म का नाम है निगेटिव ट्विन, शस्त्र से हम निकाल

ये दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म लिखती तू ऐसे कहा देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप भी हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर ये आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। अच्छा जी और रफी

इजाजत हो तो सुना दूं, ये गीत चला ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो, आशा जी और रफी जी ने आपको मिलके सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्या ख्याल है।

एवरग्रीन, जी नहीं एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ फिलिप अनुपमा में से निकाल कर नेकती और हेमंत कुमार के साज है लता जी है।

0: फिर
1: उठो ना, गाओ।
0: चलो मुँह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाना
1: है। अभी तो बहुत वक्त है, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है

बेकरार फिल्म अनुपमा में से निकाले हैं हेमंत कुमार के साथ पर लता जी ने पेश की और निगेटिव सेंसेस का ये फिल्म 1966 का ये फिल्म है। चलिए जहाँ आप भी हैं मैं भी हूँ तो आपको हम क्या सुनाते हैं। ये गीत हमने चुन की है लेकिन हमने सुना नहीं, किशोर कुमार जी आपको सुना रहा है। फिल्म है देखते हैं संसार में से निकालते हैं चित्रगुप्त के साज पर, क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार।

हाथों में किताब, बालों में गुलाब, जबरदस्ती की प्यार, हम आपको सुनाए हैं ये चटपटा चुटकुला गीत, एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं ओवर फोन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर ये आपको किसी से प्यार है और आप उनके आँखों की तारीफ करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि उनकी आँखों की तारीफ कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, रवि साहब सुनाता है आपको इस तरह से। मदन मोहन के चार साज पर फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निघ्न शस्त्र 1969 का ये गीत।

तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा किया है। रफ़ी साहब की आवाज़ में लता जी भी साथी और हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। ये बंदा जैसे रफ़ी साहब कभी शराब नहीं पीता था, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है किशोर कुमार जी भी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल वो भी शराब नहीं पीता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाए हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म कटे पतंग में से हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउनी नस्तानी रेडियो। जी हाँ, फिल्म कटी पतंग में से निकाल कर। चलिए, माई तो मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस इस तरह से।

बात है लता जी, और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म झूला में से निकाल कर, ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ और आप, मैं चला रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। गीत रखे हैं तो चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं, प्लेन में जो रखा हुआ है आपका जाना पहचाना गीत है इस तरह से।

तेरे मस्ती के घेरे ये गीत सुनाया गया फोन हिंदुस्तानी रेडियो पर जब आप चुने। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं। जी हाँ, फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं, ये गीत हम आपको सुनाते हैं। चलो सुनते इस तरह से

हर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, ये शानदार गीत चला शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की फिल्म कलंक में से निकाले हैं। और गाने वाले थे श्रिया घोषाल और वैशाली प्रीतम के साथ पर ये पेश किया गया। चलिए अगला गीत हम सुनाने वाले हैं आपको और वो ये है

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहेब और लता जी फिल्म अकेली मत जाइयो निगती इंद्रियों से अस्तख में से निकाल कर हम आपको सुनाए शानदार फिल्म। चलिए वे वे वे प्लेटफॉर्म एफएम पे इंटरनल पर आप चुने जो लोग चुनकी मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

हरी रुना लैला, रुना लैला आपको सुनाएं ये शानदार गीत और हम पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। क्या ख्याल है, चलिए सुनते फिल्म काला पत्थर में से, काला पत्थर में से निकाल रहे हैं।

हम बनाएंगे एक आशियां, ये गीत आपको सुनाया गया। लेकिन गलती हमने कहा क्योंकि नंबर बदला हुआ था ना, फिल्म काला पत्थर का नहीं है, लेकिन ये है आरती मुखर्जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए, ये दो पंछी दो तिनके, फिल्म तपस्या में से निकाले हैं, क्योंकि नंबर गलत था इसीलिए हमने पढ़ा नहीं लेकिन कह दिया, क्षमा करना, और फिल्म तपस्या में से निकाले हैं। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है, इस तरह से है।

साथियाँ नहीं जाना कि जी ना लगे, ये शानदार गीत चला और ये दुआ चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम रहे रख प्लेयर में रखे, माई टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चांद ग्रहण में से निकाले हैं जयदेव के साथ।

0: दिल समझा नहीं है, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल कर जयदेव के साज पर, और इसका म्यूजिक नेकतीन सेफन नेखन तक में निकला। तो आप सोच रहे होंगे नेकतीन सेफन नेखन तक, जबकि मुकेश जी के स्वर्गवास हो चुका था नेकतीन सेशन सेफन तक में। बात ये है, ये फिल्म बना, रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लड़ाई से ये गीत निकला नहीं, फिल्म भी नहीं निकला। तो बाद में जाकर सोनी म्यूजिक ने इस गीत को निकाला, और पता नहीं ये फिल्म निकला या नहीं, बहरहाल नेकतीन सेफन नेखन तक में जाकर ये गीत निकाला गया सोनी म्यूजिक के जरिए। चलिए अगला बयान हम आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है, और वो है ये भी माइट मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।
1: तेरा प्यार
0: असल में ये एक फरमाइश का गीत है, लेकिन कभी नहीं चलता, इसलिए हम आपको सुनाते हैं।

0: तेरा प्यार से जीवन भर जाए, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, इसलिए पेश की क्योंकि ये गीत नहीं चलता है और ये आशीर्वाद के तौर पर ये गीत को चलाया जाता है शादी विवाह में, हमने चला दी। शायद आप कभी फरमाइश दोगे और बेटी की शादी है तो इसके बारे में चर्चा करना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो वाले अवश्य जानते हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम और आपको ये सुनाते, बस वाह क्या बात है।
1: Never miss an update.

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। लता जी आपको सुनाए हैं फिल्म दर्द में से निकाले हैं निगहतिन एन तख्त का ये रोमांटिक सॉन्ग, ये प्यार भरा गीत हम आपको सुनाए हैं फॉन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुने जो लोग चुन के हैं आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको ये क्या सुना रहे हैं, वह क्या बात है। मुकेश और कंचन फिल्म धर्मात्मा में से

तुमने किसी से कभी प्यार किया है कंचन और मैथी मुकेश ने के 3-5 से ही तो धर्मात्मा में से निकाल कर ये शानदार गीत पेश किया गया 4/5 हिंदुस्तानी रेडियो। तो लीजिए इस तरह से लगातार प्रेम कहानियां ये सुनाती हैं।

अपनी प्रेम कहानियां लता जी आपको सुनाए। फिल्म मेरा गांव मेरा देश, फिल्म मेरा गांव मेरा देश से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आओ ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप जो चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत किया जा रहा है। अगला गीत, जी हाँ, अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या ख्याल है अराउंड द वर्ल्ड, जी हाँ, मैथ मुकेश और शारदा जी।

माइथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस शारदा जी के साथ अराउंड द वर्ल्ड में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर ये शानदार गीत, प्यारा गीत हमने पेश की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं। क्या ख्याल है, सुन लीजिए इस तरह से।

लिए रफ़ी साहब ने अपने प्यार का इजहार की। इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, चलो सुनते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, अगर तुम रात कहोगे तो हम रात की कहेंगे, अगर जो दिन कहो तो हम भी दिन कहेंगे।

जो तुमको पसंद वही बात करेंगे और कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर कहो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बहरहाल ये गीत सुना आपने माइक मुकेश की आवाज में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं इस तरह से।

0: रूप तेरा मस्ताना, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। इंटरनेट रेडियो या वीफी रेडियो पर आप चून हैं, तो जहाँ भी आप होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं? दरअसल में ये गीत हमने चून भी नहीं किए, तो मुझे भी नहीं पता इस गीत के बारे में। और बहुत दिन हुए हमने टेक्स्ट पढ़े हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते ये गीत कौन सा है। तो हो सकता है शायद आपको पता हो, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। हाँ, इतना तो पता है कि मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस।
1: अरे गौरी, अरे गौरी, तुम हवा में कैसे पहुंच गई? अरे मैं कुछ करता हूँ, ठहरो तुम। मत करो, हम तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलेंगे।
2: तुम तो उठा लोगे, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे?
1: अरे गांव वाले क्या कहेंगे, यही कि चंदन अपनी होने वाली दुल्हन को अपनी बाहों में लिए घूम रहा है।
2: छोड़ दे मुझे, हट बेईमान कहीं का।
1: अरे

माइति मुकेश, माइति मुकेश और साथी मैं आशा जी आपको मिलके सुनाए हैं यह गीत और हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। महेंद्र कपूर जी, चलो सुनते हैं आपको क्या सुना रहा है।

जब याद किसी की आती है, पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए, कार्यक्रम में आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ। तो क्या ख्याल अगर जो मैं यार आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

दिल में किसी के प्यार का लता जी की आवाज में सुनाया गया, जबकि आप उपस्थित हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर चून है, चून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। हमने चुन कर ये गीत रखे हैं, जी हाँ, बस आ रहा है ये शानदार गीत। इस तरह से

माइटी मुकेश द हार्ट ड्रॉप ऑफ मिलियंस ऑल लता जी साथ दी और शानदार गीत हमने पेश किए, जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके आपके लिए हमने गीत ये रखे हैं, क्या ख्याल है, बस इत्मीनान से ये लवली गीत सुनिए।

शारदा जी मिल के आपको ये द्वैत सुनाए जब भी ये दिल उदास होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि राज कपूर ने कहा कि राधा आज सिर्फ गाएगी भी नहीं लेकिन नाचेगी भी, तो आप सोच सकते हैं मैं कौन सा गीत चलाने वाला हूँ, और नहीं सोचे होंगे तो इस तरह से आ रहा है शंकर जय किशन के साथ पर।

माई थी मुकेश जी और लता जी ये दोनों मिलके फिल्म संगम में से सुनाए हैं आपको ये शानदार गीत शंकर जय किशन के साथ पर। कहा जाता है ये पहला फिल्म था जो देश से बाहर बना संगम, लेकिन मुझे इस पक्का पता नहीं है क्योंकि मैं दुविधा में हूँ। सिंगापुर बना था शमी कपूर का या राज कपूर का संगम, बहरहाल ये गीत हमने चलाए हैं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म मुद्दत में से निकाले हैं जी हाँ, आशा जी और मोहम्मद।

मुद्दत में से निकाले हैं आशा जी और मोहम्मद अजीज जी। जब मैं कहूँ बूंद जो बन गई मोती निगदिन सैफ ने सस्त मैत मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी, तो क्या ख्याल है अगर ये गीत मैं आपको सुनाऊँ इस तरह से।

मित्रों, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मित्रों मन की शांति भंग हो जाती है। आप रिश्ता नहीं रह पाते हो, हमेशा टेंशन में आप रहते हो भाई बहनों, हमेशा टेंशन में। तो व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जब आप अशांत रहते हैं तो घर में परिवार के साथ चाहे जहां भी हो आप हमेशा टेंशन में रहते हो और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो या गुस्सा कर लेते हो मित्रों। तो ये ठीक बात नहीं है। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ते रहो।

दोस्तों, तन की सुंदरता ध्यान करना। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है और जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। मित्रों, इसीलिए मनुष्य का स्वभाव यानी मनुष्य का आदत स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए।